नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूट

0: नीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

भोर की पहली आहट जब धरा को छूती है तो वातावरण में एक मधुर शांति घुल जाती है। पंछियों के चहचहाट, ठंडी हवाओं की सरसराहट और उगते सूरज की लालिमा सब मिलकर जीवन को एक नया संदेश देते हैं। यह नया संदेश, नया सवेरा हमें याद दिलाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपने भीतर उजाले को जगाने का। इन्हीं पावन भावों के साथ आरंभ करते हैं आज की वंदना।

जब मन में श्रद्धा हो तो ईश्वर दूर नहीं होते, वे हर उस कर्म में बसते हैं जिसमें सच्चाई और सेवा का भाव निहित होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी का दुख बांटना, यही सच्ची भक्ति है, यही ईश्वर का साक्षात रूप है। इसी भाव से आइए सुनते हैं ये भजन।

और अब जो भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो एक रचना नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एहसास है। इसके हर शब्द में समर्पण है, हर सुर में विश्वास की गहराई है। जब मन डगमगाता है तो यह भजन सहारा बन जाता है और भीतर स्थिरता का अनुभव कराता है। आइए इस भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं।

जब जीवन की राह कठिन हो जाए और मन भटकने लगे, तब ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा संबल बनता है। हर जप में शांति है, हर स्मरण में शक्ति, जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ सुनते हैं आज की वंदना का ये अंतिम भजन।

0: किया गया और हम इस तरह के किस्मों का विकसित करने में कामयाब हो पाए। इस तरह के जो किस्में हैं वह 1544 है, 6663 है, और ये न्यूट्री फार्म स्कीम जो है भारत सरकार का, उसमें भी इसकी उपादेयता पाई गई है, उसमें भी लागू की गई है। साथ ही गेहूं की विभिन्न किस्में जो हैं, HI 8737, HI 8759, HI 8767, HI 1605, HI 1633, HI 1634 विकसित है, जो कि इन किस्मों के सफलता में 4 चांद लगा देते हैं। और नवीनतम जैव संबंधित किस्मों को उगाया जाए और उगा करके भारत के कुपोषण को हम मिटाने में अपने आप को समर्थ पाएं। इससे क्या होता है, जैव संबंधित किस्में या गरीब से गरीब किसानों के बीच में कोई भी उपभोक्ता हो उसके भी स्तर पर यह अपनी पोषण सुरक्षा को कायम रखती है और पोषण सुरक्षा में कायम रहती है। और आप जान करके खुशी होंगे कि ये जो है माल न्यूट्रिशन, जो 50% से अधिक बच्चों की मौत जो कहीं भी होती है किसी भी देश में, वह होती है पोषण के चलते, पोषण माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के चलते। यदि आप जैव संबंधित किस्मों का उपयोग करेंगे तो हर हालत में हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और पोषण सुरक्षा भी हमारा जो है लागू रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।
1: जैव संवर्धित किस्मों की उपयोगिता, इस विषय में जानकारी दे रहे थे प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूं? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूं जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

7:20 पर आप गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुनेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। आज का कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित होगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी दुर्गेश नंदिनी चौधरी। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। मराठी कार्यक्रम आप सुबह 9 बजे से सुन सकते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है ICSE बोर्ड 10th की टॉपर सारा काशिकर से बातचीत और धनंजय गाडगिल का काव्य पाठ। शास्त्रीय संगीत में संस्कृति बहाने एवं प्रकृति बहाने का के संतूर वादन का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:30 पर। आज के कार्यक्रम में आप संतूर पर बजाया राग मियां की तोड़ी सुनेंगे। 10:05 का समय होगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। और आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। 11 बजे से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और 2:30 पर। 12:30 का समय संग्रहालय से कार्यक्रम का होगा। 1 बजे से आप स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 पर आप सुगम संगीत सुनेंगे। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बताएं तो शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में आज कुछ बातें कुछ गीत क्रम होगा। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:45 और चित्र गीत में रात 9:15 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा शाम 6 बजे से। सुगम संगीत में अनिमेश भट्ट की गायी रचनाएं शाम 6:30 से सुनी जा सकती हैं। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। ग्राम लक्ष्मी

0: कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। आज के कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर बात होगी, साथ ही सही नमूना एवं परीक्षण अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर डॉक्टर अंजलि भार्गव जो कि सहायक प्राध्यापक हैं मृदा विज्ञान विशेषज्ञ, उनके द्वारा दी गई जानकारी आप सुन सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन क्रम भी होंगे। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 9:30 और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात्रि 10:00 से। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 जितेंद्र अभिषेकी का गायन सुनवाया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। 6:55 होने को हैं, थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथ ग्रहणम अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनंतपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात प्रदेश से गांधीनगरे 700 कोटि मितानाम विकास परियोजनानाम उद्घाटनम शिलान्यासम च।

0: कृतवान् स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य शतम कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाह विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाह सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाह एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तम्भौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए।

0: के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी जो ईरान के विरूद्व ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: पर सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार हूँ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। SDOP और SDM समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर, राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्रीन एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कल श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
0: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ श्री मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। AI से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई, जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की मदद करेगी। प्रदेश में आज PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझ सकेंगे। रायसेन में BJP का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कल खत्म हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। वहीं विदिशा में श्री चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की।
2: यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल, विशेषकर मेडिकल कॉलेज में अगर जगह मिल जाए तो वहाँ फेजेज में वो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज। पहले फेज में वो उस जगह पर कीमोथेरेपी से शुरू करेंगे। मुझे विशेषकर चिंता थी मेरी बहनों की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी संख्या में होता है और बहनें बताती हैं। तो ये आया कि एक व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग हो जो 5, 6 और 7 जून को। तो टाटा मेमोरियल वालों ने सुझाव दिया कि 3 दिन रहने।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: धार की भोजशाला में कल सुबह मां वागदेवी की प्रतिकृति गर्भगृह में स्थापित की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद सुबह 6:27 पर मंत्रोच्चार और हवन के बीच यह पूजन संपन्न हुआ। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल के किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती की तस्वीर बदल दी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने खेती को घाटे के काम से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बना दिया है। उनकी ये कामयाबी जिले के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: बैतूल जिले के एक युवा किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इस युवा किसान ने बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जिससे मध्य प्रदेश शासन की किसान हितैषी योजनाएं भी मददगार साबित हुई।
5: मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना से 9,60,000 रुपए का अनुदान लेकर कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही मैंने सुपर सीडर थ्रेसर रोटावेटर को व्यवसाय का रूप देते हुए पहले वर्ष में 8,00,000 रुपए का और दूसरे वर्ष में 12,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है।
4: आज कमलेश देशमुख क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीक योजनाओं का समुचित उपयोग और नवाचार की सोच से खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सकता है। बैतूल से मयंक भार्गव।
0: देवास के टोक कला के पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी कमजोर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के रूप में दिया जाएगा। 1954 से शुरू यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने भोपाल की अपर झील में अपना नौकायन केंद्र शुरू किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र नौसेना के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को भी रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग का प्रशिक्षण देगा। 5 साल पहले शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज योजना आज रंग लाने लगी है। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ा है और चीन से आयात में काफी कमी आई है। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70% किए जाने का असर साफ दिख रहा है। बाजार में अब घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर भी लगाम लगी है। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में उगने वाला नूरजहां आम अपने विशालाकार की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये एक आम का वजन 2 से 5 किलो तक होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहते हैं। बाजार में इसकी कीमत 1500 से 3000 रुपए प्रति आम तक पहुंच जाती है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा समेत 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। खजुराहो में कल सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 50 बिस्तरों वाले आयुष वेलनेस सेंटर और एलीट शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में संभावना गतिविधि के तहत कोरकू, बुंदेली और बघेली लोक नृत्य गायन की रंगारंग प्रस्तुति हुई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटिक ने सागर से टीकमगढ़ तक का सफर सरकारी काफिले की जगह आम यात्री बस से किया। बैतूल में पर्यटन बोर्ड की जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होम स्टे का उद्घाटन किया गया और विदिशा में 59,000 से अधिक किसानों से 5,09,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दुर्गेश नंदिनी चौधरी।

0: में उठी।
1: श्रोताओं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में बच्चों की फरमाइश पर घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो सोच क्या रहे हैं, निकल पड़िए एक ऐसी रोचक यात्रा पर जहां पर इतिहास और संस्कृति के दर्शन हो, जहां के संग्रहालय ज्ञानार्जन के केंद्र हो। इतिहास और संस्कृति से प्रेम करने वाले हमारे घुमक्कड़ यात्रियों को ऐसी ही जगह की तलाश होती है। तो बस बांध लीजिए अपने ट्रैवलिंग शूज के फीते कसकर।

वक्त की धूल को झाड़कर फिर से जिंदा कर दिया। संग्रहालय ने इतिहास को एक आईना दिखा दिया। पुरानी यादों का एक हसीन सा मंजर है ये संग्रहालय। मेरे शहर का सबसे खूबसूरत घर है ये संग्रहालय। श्रोताओं, पुरानी तलवारें, टूटे हुए कलश और बुझी हुई मशालें आज भी संग्रहालयों की शान बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आज भी राजाओं की बहादुरी की गूंज यहाँ पर गूंज रही है।

जी हाँ श्रोताओं, म्यूजियम प्रेमियों के लिए ऐसे बहुत से शहर हैं, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर पहुँचकर उनकी तलाश खत्म होती है, चेहरे पर चमक और दिल को सुकून मिलता है।

0: श्रोताओ, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, जो समाज में संग्रहालयों के महत्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज गुड मॉर्निंग इंदौर का विषय है सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र हमारे संग्रहालय।
1: श्रोताओं, हमारे साथ हैं इतिहासकार संरक्षणवादी अभिलेखापाल जफर अंसारी म्यूजियम ऑफ इंदौर के संस्थापक श्री जफर अंसारी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार। नमस्कार
1: सर। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का शुभारंभ करें, एक बार आप हमारे साथ बोलें गुड मॉर्निंग इंदौर।
2: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: क्या बात है श्रोताओं, बड़े ही जोश के साथ गुड मॉर्निंग इंदौर हो गई है और अब हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, शहर की सांस्कृतिक आत्मा के एक अथक संरक्षक के रूप में आपकी पहचान बन चुकी है। 3 दशकों से अधिक समय से आपने अपना जीवन इंदौर के बहुस्तरीय इतिहास को उजागर करने में समर्पित कर दिया। हम देख रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा संग्रह है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने नायाब संग्रहालय के कलेक्शन की शुरुआत कैसे की और इसमें इंदौर और होलकर रियासत के कितनी विधाओं का संग्रह है, प्लीज बताएं।
2: एक्चुअली 12 जनवरी 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये पिछले 3 दशक से 30 वर्षों से ये देश दुनिया के तमाम पूरी दुनिया से इंदौर का कलेक्शन किया, इंदौर के इतिहास का, होलकर का, और ये 300 बरस का सफर इंदौर की यात्रा का दिखाता है। इसमें 20 हैं जिसके अंदर पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, मेडल्स हैं, बैचेस हैं। इसमें पूरा क्वाइनेज है होलकर स्टेट का, देवी अहिल्याबाई होलकर से लेके अंत तक का इसमें क्वाइनेज है, जिसमें सिक्कों के माध्यम से जो है तो वो पूरी स्टोरी है। एंड वी गॉट पोस्टल हिस्ट्री हमारे पास पूरा होलकर रियासत में किस तरह से 1886 में पहला डाक टिकट निकला और उसका पूरा इतिहास है। शाही पगड़ियां जो होलकर शाही पगड़ियां थी या पेशवा शाही पगड़ियां थी, उन पगड़ियों का पूरा एक कलेक्शन है और शाही कपड़े हैं। इसे बहुत लंबा कलेक्शन है जो 20 गैलरीज के अंदर इसको डिस्प्ले किया जाएगा और अभी इसका पूरा संरक्षण कंजर्वेशन चल रहा है। इन सब जो कलेक्शन है ये डिपिक्ट करता है, इसके माध्यम से हम जो है शहर के उतार चढ़ाव, किस तरह से यहाँ पर ओपियम ट्रेड था, अफीम का ट्रेड चाइना तक था इंदौर से, और किस तरह से कपास ने इंदौर को बहुत मजबूत किया, कई दशकों तक कपास ने बहुत संभाला। तो हमारे यहाँ का सबसे निमाड़ का, सबसे ब्लैक कॉटन सॉइल का जो कपास था पूरी दुनिया में ज्यादा था, तो वो सारी रिफ्लेक्शन जो है इन कलेक्शन से मिलती है। हमारे यहाँ मिल्स थी जो पूरे दुनिया में जिसने डंका बजाया, वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी मिलें चलती रही, तो ये तमाम चीजें जो कलेक्शन है वो रिफ्लेक्ट करती हैं पूरे शहर की प्रोग्रेस को।
1: सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है बातचीत के माध्यम से। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को भी आनंद आ रहा होगा हमारी बातचीत से। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूली बच्चों को शुरुआती दौर से संग्रहालय से कैसे जोड़ा जा सकता है और म्यूजियम के माध्यम से किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है।
2: देखिए, जो म्यूजियम्स हैं वो बड़े हब है एजुकेशन के, किसी भी तरह के, आप साइंस म्यूजियम देख लीजिए या फिर ऐतिहासिक वस्तुओं का म्यूजियम देख लीजिए। इंदौर में 1923 में पहला म्यूजियम बना था जिसे नर रत्न मंदिर कहा गया था, जो वर्तमान देवलालिकर कला विधि का है, वहाँ स्थापित हुआ था। फिर आजादी के बाद जो है सेंट्रल म्यूजियम में तब्दील हुआ, तो 100 बरस के अंदर इंदौर जो है वो इंदौर में सैंडी म्यूजियम बने और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंदौर में स्कूल है, हजारों की तादाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, तो एक बहुत बड़ा हब का काम करता है, एक सेंटर का, केंद्र का काम करता है म्यूजियम। और जब बच्चे छोटे होते होते मोल्ड होते हैं म्यूजियम में देख के कौन सी चीजें उनको आकर्षित करती है, दिस इज द राइट टाइम टू, जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है म्यूजियम, जो क्लासरूम से उनकी जो कक्षा है उससे बाहर आके शिक्षा के रूप में वो केंद्र काम म्यूजियम काम करते हैं।
1: शायद यही वजह है कि स्कूल से अक्सर बच्चों को म्यूजियम ले जाया जाता है विजिट करने के लिए, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी म्यूजियम की अहम भूमिका है।
2: बहुत बड़ी भूमिका है और ये एक बहुत देर तक असर होता है म्यूजियम, क्योंकि उसमें फिजिकली आर्टिफैक्ट्स होते हैं, फिजिकली सारी चीजें होती हैं जिसे बच्चे देख के काफी इम्प्रेस होता है और उसको हमेशा याद रहता है वो सब चीजें। तो क्लासरूम से बाहर जब आप बच्चों को ले जाएंगे एजुकेशनल विजिट पे, यहाँ मॉन्यूमेंट के पास हेरिटेज वॉक के दौरान ले जाते हैं, तो वो कभी नहीं भूलते हैं, उसको हमेशा याद रखते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने सर ये कही। सर, हमारा शहर शिक्षा और चिकित्सा का हब माना जाता है, जैसा कि अभी आपने भी कहा, क्या इंदौर शहर में संग्रहालय की कमी है? नए संग्रहालय कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, मार्गदर्शन करें प्लीज।
2: एक्चुअली म्यूजियम्स को स्थापित करना एक प्रोसेस होती है, हम चाहें कि 1-2 साल में म्यूजियम बना लें, तो म्यूजियम का कलेक्शन में डेकेड्स लगते हैं, दशक लगते हैं, कई दशकों तक उस पर काम करना होता है, जो बड़ा जटिल होता है। जो बिल्कुल डीप म्यूजियम होते हैं उसमें सारी ओरिजिनल वस्तुएं होती हैं और इस तरह के म्यूजियम जो है इंदौर में बनना बेहद जरूरी है, बिकॉज इंदौर एजुकेशनल का और चिकित्सा का हब 19वीं शताब्दी के मध्य से रहा है और इंदौर में जो डेली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1886 में, तो वो उसी बिल्डिंग से, जो MY के पास में एक चर्चनुमा बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग से इंदौर की चिकित्सा और शिक्षा की नींव रखी गई थी और आज इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा हब है। तो ये म्यूजियम

0: मानना साइंस म्यूजियम हो या अलग अलग विधाओं के म्यूजियम हो या सिनेमा म्यूजियम हो, ये बहुत बड़ा फीड करता है एजुकेशन हमारे बच्चों को। और शहर में इस तरह के म्यूजियम स्थापित करना, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, उस पर्यटन को हम काफी आगे ले जा सकते हैं।
1: जी सर, ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि शहर में और भी संग्रहालय बनने चाहिए। सर, बच्चों में डाक टिकट, सिक्के और अन्य ऐतिहासिक महत्व की सामग्रियों का संग्रह करने की आदत क्या हमें डालनी होगी? आपके क्या विचार हैं?
0: हाँ बिल्कुल डालनी होगी। हमारे बच्चे इससे दूर हो गए हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी जब से आई है। तो हमारे बच्चे जो पहले संग्रह करते थे, आपने देखा होगा गर्मी की छुट्टी में कॉमिक्स पढ़ा करते थे, डाक टिकट का कलेक्शन होता था, क्वाइंस का कलेक्शन होता था, ऐसे बहुत सारे मैच बॉक्स का कलेक्शन करते थे। तो इस तरह से कई विधाएं थी जो उनको जोड़ के रखती थी और उनके संग्रह पे, उनके कलेक्शन में उनको फख्र होता था। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, मैं डाक टिकट के लिए कई किलोमीटर तक सरकारी दफ्तरों में जाता था। तो ये जोड़ती है, कनेक्टिविटी करती है और हमें एक तहजीब सिखाती है कि हम किस तरह से चीजों को संभाले और ये आने वाली पीढ़ी को किस तरह से तमाम चीजें पहुंचाई जाएंगी। तो बच्चों में इस तरह के शौक जो है, हॉबीज जो है, चाहे डाक टिकट हो, चाहे कॉइन्स कलेक्शन हो जिसे फिलैटेली न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, इनका शौक होना चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और तमाम किसी भी चीज का आप कलेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो या बीज का हो, पत्थरों का हो, अलग अलग तरह का। तो ये शौक जो बच्चों से दूर हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, इसको वापस लाना होगा।
1: सर, बहुत ही अच्छी हमारी बातचीत हुई, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन मिला होगा। आज इस अवसर पर यदि आप कोई गीत सुनना चाहें तो बताएं प्लीज।
0: बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और वो रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं, तो आशीर्वाद फिल्म 1968 में अशोक कुमार साहब ने एक रेलगाड़ी, छुक छुक रेलगाड़ी का गाना गाया था, वो हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को सुनाना चाहेंगे। और एक खेल भी होता था रेलगाड़ी उस जमाने में, तो ये गाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा।
2: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

0: भप भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पर डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम मछलीपट्टनम ओंगोल नर्दिगोल नर्दिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोतनूर कोतनूर शोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: क्या बात है श्रोताओं, गुड मॉर्निंग इंदौर हो गई है और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हैं कलाकार और फोटो पत्रकार प्रीति मान जी। नमस्कार प्रीति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बहुत

0: स्पेशली म्यूजियम घुमाने के लिए। तो हम वो वाली जनरेशन से आते हैं जिसमें हमारा एक बॉन्ड है अपने कल्चर के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ। संग्रहालय की जो हमारी ट्रिप होती थी उसमें एक बीज डाला हमारे अंदर कि हम अपनी संस्कृति से कनेक्ट करें, हमें अपना इतिहास पता है, हम उसकी वैल्यू करना जानते हैं। तो आज की जो जनरेशन है उसके लिए भी मुझे बहुत जरूरी लगता है। उसमें अच्छी बात यह है कि अब वर्चुअल म्यूजियम भी आ गए हैं, बहुत सारे म्यूजियम हैं जो वर्चुअल टूर देते हैं। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं पेरिस में या इटली में या कहीं बाहर के किसी म्यूजियम को देखना चाहूँ या घूमना चाहूँ तो मेरे पास में ये सुविधा है कि मैं अपने घर में बैठे बैठे वो वर्चुअल टूर के थ्रू मैं उसको देख सकती हूँ। तो इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें देश विदेश की सारी सांस्कृतिक अनुभूति मिलती है उससे। तो महत्व तो अभी भी मुझे लगता है बहुत है।
1: जी, बहुत ही अच्छी आपने ये बात बताई कि आधुनिक समय में भी संग्रहालय जो है उनकी अपनी एक विशेष भूमिका है। चूँकि फोटो पत्रकारिता आपका पेशा है प्रीति जी, आप पर्यटन प्रेमी भी हैं, कलाकार भी हैं, तो आपकी दृष्टि में संग्रहालय हमारे इतिहास और संस्कृति को कैसे बचाते हैं, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं प्लीज।
0: जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा देश जो है विभिन्न संस्कृतियों वाला, विभिन्न भाषाओं वाला देश है, जिसमें भांति भांति की परंपराएं रही हैं, भाषाएं वगैरह रही हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, हमें साउथ के बारे में उस तरह से जानकारी उतनी नहीं होती है। अगर मैं कहीं हैदराबाद घूमने के लिए गई हूँ या तमिलनाडु घूमने के लिए गई हूँ तो मुझे वहाँ की संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने का सबसे सही माध्यम ये होता है कि मैं वहाँ के किसी संग्रहालय में विजिट करूँ और मैं देखूँ कि उनके किस तरह के पुराने समय में किस तरह के वस्त्र वो लोग इस्तेमाल करते थे, किस तरह के गहने इस्तेमाल करते थे, भोजन पकाने के बर्तन किस तरह के होते थे, क्योंकि तब से अब तक में बहुत बदलाव आ गया है। तो एज अ फोटोग्राफर और एज अ फोटो जर्नलिस्ट भी, क्योंकि हम काफी ट्रेवल करते रहते हैं, तो हमें अलग अलग जगह पे अगर मैं किसी नए शहर में गई हूँ या किसी नए स्टेट में गई हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मुझे वहाँ का म्यूजियम घूमना है। और ये बचपन से मेरा शौक भी रहा है, मुझे पसंद भी है, और एज ए कलाकार भी हमें बहुत कुछ समझने के लिए मिलता है म्यूजियम से। हमारे देश की, हमारी संस्कृति की विरासत होती है वहाँ पे, काफी सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो हमें आमतौर पर नहीं होती हैं। अब जैसे हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इंदौर का जो स्टेट म्यूजियम है वो बहुत कमाल का म्यूजियम है। आपको वहाँ पे कई तरह के ऐसे पुरातात्विक वस्तुएं देखने को मिलती हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं, आपको कोई जानकारी नहीं आपके सामान्य जीवन में। ऐसे ही अगर हम भोपाल में देखें, भोपाल को सिटी ऑफ म्यूजियम्स भी कहा जाता है, वैसे तो सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं लेकिन सिटी ऑफ म्यूजियम्स भी कहा जाता है। ये माना गया है कि देश में भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा म्यूजियम। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इतने समृद्ध हैं मध्य प्रदेश के निवासी होते हुए कि हमारे पास में इतनी सुविधाएं हैं, इतना डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम है, ट्राइबल म्यूजियम में मैंने उसके ऊपर स्टोरी भी की है एज ए फोटो जर्नलिस्ट बीबीसी के लिए। वहाँ पे आपको, क्योंकि मैं एज ए पत्रकार भी जा रही थी और एज ए फोटोग्राफर भी जा रही थी, तो मेरे लिए वो अनुभव बिल्कुल अलग तरीके का था। क्योंकि आपका देखने का एक नजरिया होता है कि आप किस तरह से, और क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो मेरे लिए ये भी बहुत जरूरी था कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसको मैं किस तरह से ऐसे रखूँ क्योंकि वो नेशनल न्यूज है, वहाँ वो पूरा देश देखेगा उस खबर को। तो ये सारी चीजें आपको एनरिच करती हैं, आपको और समृद्ध बनाती हैं। वो किसी भी देश में आप जाइए, उसके जो संग्रहालय होते हैं वो उनकी संस्कृति को आगे ले जाने, मतलब आगे की पीढ़ी को ये सिखाने के लिए कि आपको आगे क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, और पीछे जो आपके पूर्वज हैं वो क्या करके गए हैं, क्या छोड़ के गए हैं, इसकी समझ पैदा करना और इसकी जिम्मेदारी पैदा करने के लिए संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी प्रीति जी, आपकी बातचीत से हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो म्यूजियम से बहुत लगाव रखती हैं, जुड़ाव रखती हैं, और बचपन से ही आपका गहरा नाता रहा है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में संग्रहालयों का क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है।
0: बचपन से ही मुझे बहुत शौक रहा है। मेरी कोशिश भी ये होती है कि मेरे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं किसी भी तरह से बहाने से म्यूजियम ले जाऊं, संग्रहालय दिखाऊं, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जितना मुझसे हो सके मैं उन्हें समझाऊं, उन्हें कुछ सिखाऊं, ताकि वो अनुभव कर सकें कि इस देश की संस्कृति के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब हमारे यहाँ पे चूंकि कला साहित्य हो गया, कला से म्यूजियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि संग्रहालय के लिए पढ़ाई करवाई जाती है, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कला के जो छात्र होते हैं या पत्रकारिता के छात्र होते हैं या फोटोग्राफी के छात्र होते हैं, उनको इन संग्रहालयों की वजह से किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, किस तरह अपनी संस्कृति को प्रोजेक्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड, दुनिया में अगर आप कहीं पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कैसे अपनी भारतीय संस्कृति को, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपना इतिहास पता हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो शिक्षा क्रम है हमारा उसमें बच्चों को

0: संग्रहालय विजिट तो होनी ही चाहिए। जितना वो अपने इतिहास से जुड़ेंगे उतना ही वो अपने भविष्य के प्रति सजग होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के म्यूजियम्स भी हैं हमारे यहाँ पे। आप दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पर नेशनल म्यूजियम है। हमारे यहाँ पे कलकत्ता का जो नेशनल म्यूजियम है वो सबसे पुराना म्यूजियम है हमारे देश का। ऐसे ये हमारी संस्कृति का बहुत गहरा हिस्सा है ये।
1: जी, बहुत ही अच्छी आपने ये जानकारी दी, और हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संग्रहालयों की अहम भूमिका है। प्रीति जी, एक फोटोग्राफर के दृष्टिकोण से प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र कैसे बनते हैं, क्या कैमरे के माध्यम से विविध संस्कृतियों के संवाद को चित्रित किया जा सकता है?
0: जी, मैं ये मानती हूँ कि एज ए फोटोग्राफर जो मेरा दृष्टिकोण है, संग्रहालयों का जो महत्व है वो बहुत गहरा और रचनात्मक होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, यहाँ सिर्फ ये देखने समझने की जगह होती है कि एक जीवन फोटो स्टूडियो पूरा चल रहा है आपके साथ में। जब आप म्यूजियम में घूम रहे होते हैं, वहाँ की जो लाइटिंग होती है, वहाँ पे किस तरह से आप एक स्टूडियो फोटोग्राफी करते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपको एक कल्चरल सेंस आता है, आपकी ये समझ बढ़ती है कि अभी जो इस वक्त हम जिस तरह परिवेश में जी रहे हैं और जो परिवेश में पहले उसको मैं किस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरी एक समझ बढ़ती है उन सब चीजों को लेकर। फोटोग्राफर के लिए म्यूजियम एक ऐसा मंच होता है जहाँ इतिहास भी है, धर्म, कला, संस्कृति, सब को आप एक कैनवस की तरह देखते हैं, क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो कैनवस आ ही जाता है उसमें, तो आप उस तरीके से उसको देखते हैं और उससे जो आपकी समझ डेवलप होती है। जैसे मैं जो फोटो जर्नलिज्म करती हूँ वो आर्ट एंड कल्चर पे ही है, मतलब कला और संस्कृति पे ही मेन काम होता है मेरा।
1: जी जी।
0: तो उसमें मेरी समझ बढ़ती है क्योंकि मैं अपनी संस्कृति को समझ रही हूँ, तो मैं अपने कैमरे के थ्रू उसको प्रोजेक्ट भी ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाती हूँ क्योंकि मेरी एक अपनी समझ है। तो इस लिहाज में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका है म्यूजियम की या संग्रहालय की किसी भी फोटोग्राफर के जीवन में।
1: प्रीति जी, बातचीत के माध्यम से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि वाकई जो हमारे संग्रहालय है उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज इस अवसर पर आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी, बताएं प्लीज?
0: मैं मधुमती फिल्म का एक गीत है, सुहाना सफर और ये मौसम है।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: श्रोताओं, हमारे साथ हैं चित्रकार एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव डायरेक्टर श्री राजीव शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार जी।
0: श्रोताओं, हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारत में टाइपराइटर के संरक्षण और उनके इतिहास को जीवित रखने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में, जी हां, हमारे शहर में एक विशिष्ट संग्रहालय है। जी हां, और इसके संस्थापक हैं श्री राजीव शर्मा जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। सर, हम देख रहे हैं आपके संग्रहालय में बहुत सारे टाइपराइटर एकत्र किए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इनके विषय में जानकारी दें। इस म्यूजियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी आप बताएं।
1: टाइपराइटर एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, जो दुनिया के अंदर सभी भाषाओं के अंदर इस मशीन का उपयोग में लिया गया है। और ये देखा जाए तो कम्युनिकेशन के अंदर जो एक बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया में आया है, मतलब हाथ से लिखे हुए शब्दों को प्रिंट वाले शब्दों में ट्रांसफर करने का, वह टाइपराइटर के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि यह अब कंप्यूटर के चलन के बाद टाइपराइटर का मिलना बनना कम हो गया है, तो इसलिए मेरे पास कुछ बचपन में टाइपराइटर से जुड़ी हुई चीजें थी, मेरे पिताजी के साथ मुझे मिली थी, तो उसको मैं संग्रहित करने की कोशिश में हूँ और उद्देश्य से लेके इस म्यूजियम की स्थापना करने का विचार किया हो।
0: तो सर, ये तो बात हुई कि कैसे शुरुआत हुई। सर, आपके संग्रहालय में कितने टाइपराइटर हैं, अलग अलग भाषाओं के भी हैं?
1: जी जी जी, मैं टाइपराइटर में थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर दूं कि मैकेनिकल एक होता है, जिसके अंदर पूरा सभी चीजें स्क्रू, स्प्रिंग और मैकेनिकल वर्किंग होती है, जो सबसे पहला इजाद हुआ है। उसके बाद वाली सेकंड प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आए हैं, जिसके अंदर मोटराइज हो गया है, और उसके बाद कंप्यूटर की जो बेसिक चिप और ये होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। तो तीन तरह के वेरियंट इसमें आते हैं, और ये तीनों तरह के टाइपराइटर अभी अपने संग्रह में है, और लगभग 550 मशीनें जो है विभिन्न तरह की, वो अपने संग्रह के अंदर है। इसके अंदर भाषा में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश तो विशेषकर ही, साथ में तेलुगु, तमिल, गुरुमुखी, कन्नड़, मराठी और गुजराती। इसके अलावा विदेशी भाषा जो है, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, अरेबिक और उर्दू भी टाइपराइटर भी संग्रह में है।
0: क्या बात है सर, यानी कि लगभग सभी भाषाओं के आपके पास उपलब्ध हैं टाइपराइटर।
1: जी जी जी,
0: बहुत ही अच्छा संग्रह है, बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही है। सर, कंप्यूटर के प्रचलन पूर्व टाइपराइटर का बड़ा जलवा था, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताएं प्लीज।
1: जी जी जी, ये बड़ी रोचक बात है, क्योंकि टाइपराइटर पहले हर ऑफिस के अंदर घुसते से ही सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी महंगी चीज दिखना चाहिए तो वो टाइपराइटर होता था। एक ऑफिस का लुक जो है टाइपराइटर से ही आता था। अलावा इसके विदेशों में जितने भी राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं या लेखक हैं, वो अपना व्यक्तिगत टाइपराइटर रखते थे। जैसे मिस्टर हेनरी फोर्ड थे, वो अपना टाइपराइटर रखते थे। रिचर्ड बर्टन करके फिल्म स्टार रहे हैं, तो वो तो अपने स्लाइड में अपने साथ में उनके फोटोग्राफ देखे जा सकते हैं। यहाँ संग्रह में फोटोग्राफ भी है अपने पास में उनका, वो साथ लेके जाते हैं अपने कहीं भी जाते थे। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही एक जमाने।
0: यानी सर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये साथ में रखना एक शान की बात होती थी।
1: जी जी, मतलब आज के जमाने में जैसे आईफोन रखते हैं, उस जमाने में टाइपराइटर पैसा माना जाता था।
0: बिल्कुल सर, जिस तरह से आजकल हाथ में आईफोन होता है और उसमें लोगों को बड़ा फख्र महसूस होता है। सर, आपके म्यूजियम में कोई दुर्लभ मशीन या कहे की रोचक टाइपराइटर संग्रह में हो तो उसकी जानकारी भी दें हमारे श्रोताओं को।
1: जी जी बिल्कुल, तोशिबा का 1947 का एक टाइपराइटर है। ये सिंगल प्रिंट करता है, इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज नहीं होती है। ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहाँ पर उस कॉपीज नहीं हो या सीक्रेट रखना हो, तो उसके लिए उपयोग में आता है। इसी प्रकार एक मैग्नन है, जो इंडेक्स टाइपराइटर होता है, एक 26 इंच कैरेज, मतलब अखबार का साइज होता है, जो अखबार खोलते हैं बड़ा अपना, तो इतना बड़ा जो बैलेंस शीट एक जमाने में उस पर टाइप होती थी। और इसी तरह से हिंदी का एक ओलिवेटी टाइपराइटर है, जिसपे सब चीजें हिंदी में, इवन कंपनी का नाम भी है इटली की बनी हुई है, पर उसने हिंदी में लिखा है। क्योंकि जब कंपनी ने बनाया था तो उन्हें ऐसा लगा था कि जिस देश के लिए हम बना रहे हैं, तो उस देश के लोगों को अपनी भाषा से बहुत प्रेम होगा, तो उन्होंने उस पर सब चीजें जो है, मतलब बनाने वाली कंपनी का नाम भी और लोगों भी हिंदी में बना के दिया गया।
0: कुल मिलाकर सर, काफी दुर्लभ टाइपराइटर आपके संग्रह में है, हम कह सकते हैं।
1: जी जी, प्रयास तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें दिखा सके लोगों को, जो एक सीक्वेंस मिले, जिसके अंदर एक पूरी एक कहानी बनती जाए साथ में, कि कैसे समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, कैसे मशीनों में परिवर्तन हुए हैं।
0: सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। सर, एक और सवाल है कि इस डिजिटल युग में फिजिकल म्यूजियम्स की समाज को आवश्यकता है क्या?
1: जी जी बिल्कुल आवश्यकता है। आज जैसे हम मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में बहुत सारी चीजों का समावेश है, पर ये चीज हुई कैसे, मोबाइल तक पहुंची कैसे? तो ये यात्रा जो पूरी है, ये यात्रा देखने के लिए जब तक हम खुद व्यक्ति, शहर, सामान को देखेंगे नहीं, मशीनों को देखेंगे नहीं, तब तक हमको उसकी जर्नी नहीं पता लगेगी। इसलिए फिजिकल म्यूजियम होना बहुत जरूरी है।
0: सर, एक और प्रश्न है, हम कह सकते हैं ये प्रश्न

0: वर्तमान पीढ़ी के लिए हम कह सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, जो जेंजी जनरेशन में टाइपराइटर के प्रति लगाव देखने को मिलता है?
1: जी, ये बड़ा रोचक है। हम दोनों बड़ा नई जनरेशन के बच्चे लोग जो है वो टाइपराइटर ढूंढते रहते हैं और अपने कैफे शॉप में जाके वहाँ बैठ के अपनी कविताएं या अपना होमवर्क करना है वो टाइपराइटर पे करने लगे हैं। तो विदेशों में तो टाइप डे आउट करके इस तरह से प्रोग्राम भी करते हैं कि लोग कैफे में इकट्ठे होते हैं, सब लोग अपने टाइपराइटर ले आते हैं और साथ में टाइप करते हैं। लोगों का झुकाव इस पे बढ़ता जा रहा है और मशीनें ढूंढने लगे हैं लोग पुरानी।
0: क्या बात है सर, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। सर, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हर घर म्यूजियम अभियान के बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है NCSM जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, तो इन्होंने एक अभियान चालू किया है कि जिनके घरों में कलेक्शन है कोई भी सामान का, किसी के पास पेन का हो, घड़ी का हो, जो भी पुराने बर्तन का हो, तो उसको वो अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करे और उनको उनकी जानकारी दे, फिर वो उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो जो उनका हर घर म्यूजियम करके उन्होंने अपना वो बनाया है पोर्टल, वहां से उसको प्रसारित करते हैं। इसके अंदर आपको सामान उनको सरकार को देना नहीं होता है, वो आपके पास ही रहता है, प्रॉपर्टी आपकी होती है, बस लोगों को जानकारी मिलती है कि आपके पास इस तरह का कलेक्शन है और इस तरह से लोगों के सहजने की प्रवृत्ति जो है उनको संभालने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है इसका।
0: क्या बात सर, बहुत ही अच्छा अभियान है और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को भी मार्गदर्शन मिला होगा हमारी आज की बातचीत से। सर आपकी पसंद का कोई गीत जो इस अवसर पर आप सुनना चाहें तो बताएं प्लीज।
1: अब अवसर तो टाइपराइटर का है, तो मेरी पसंद का एक गाना टाइपराइटर से जुड़ा हुआ है, फिल्म है बॉम्बे टॉकी, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने गाया है
0: जी।
1: और इस गाने में बहुत से लोग जो पुराने लोगों को याद भी आ जाएगी कि टाइपराइटर की कहानी कैसे होती है।

श्रोता, यह था कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। प्रस्तुत कर रही थी दुर्गेश नंदिनी चौधरी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रांगर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति

0: की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
4: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
6: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

0: मन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिन्दुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग

श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में महिलाओं के 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है। बिंदी, सिंदूर, पायल, मेहंदी और गहनों के साथ साथ चूड़ियां भी स्त्री सौंदर्य की पहचान मानी जाती हैं। चूड़ियों की खनक केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि ये खुशियां, प्रेम, सौभाग्य और परंपरा की मधुर ध्वनि मानी जाती है। कहा भी गया है कि खनकती चूड़ियों की आवाज में एक स्त्री के सपनों की मिठास छुपी होती है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रुतो, चूड़ियों की आवाज में एक अलग ही संगीत होता है। जब माँ रसोई में काम करती है तो उसकी चूड़ियों की खनक घर में अपनापन घोल देती है। जब नई दुल्हन घर में आती है तो उसकी चूड़ियों की आवाज पूरे घर में उत्सव का एहसास कराती है। भारत में चूड़ियों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं में भी महिलाएं मिट्टी, शंख, धातु और कांच की चूड़ियां पहनती थी। समय बदलता गया, फैशन बदलता गया, लेकिन चूड़ियों का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में चूड़ियों की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की लाख की चूड़ियां, पंजाब का चूड़ा, बंगाल का शंख पोला,

0: ये मेरा
1: विवाह के बाद नई दुल्हन के हाथों में सजी हुई रंग बिरंगी चूड़ियां उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। माना जाता है कि चूड़ियों की मधुर खनक घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाती है। चूड़ियों के रंग भी अपने आप में कई भावनाएं समेटे होते हैं। लाल चूड़ियां प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। हरी चूड़ियां खुशहाली और सौभाग्य का संकेत देती हैं। पीली चूड़ियां आनंद और उत्साह को दर्शाती हैं और बंगाल में पहने जाने वाली सफ़ेद चूड़ी शांति और सरलता का प्रतीक मानी जाती है। त्योहारों पर महिलाएं विशेष रूप से नई चूड़ियां खरीदती हैं, चाहे तीज हो, करवा चौथ हो, ईद, दीपावली या शादी ब्याह। चूड़ियों के बिना श्रृंगार अधूरा सा लगता है।

आज फैशन के दौर में चूड़ियों की डिज़ाइन और स्टाइल में काफ़ी बदलाव आया है। अब कांच की चूड़ियों के साथ साथ मेटल, ऑक्सीडाइज सिल्वर, बीट्स और डिज़ाइनर चूड़ियाँ खूब पसंद की जाती हैं। युवतियाँ पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह के पहनावे के साथ चूड़ियों को स्टाइल करती हैं। चाहे रूप बदल जाए, चूड़ियों की भावना वही रहती है, स्त्री की सुंदरता और उसकी मुस्कान को निखारना।

कई महिलाओं के लिए चूड़ियाँ केवल गहना नहीं होती, बल्कि यादों का हिस्सा होती हैं। माँ की दी हुई चूड़ियाँ शादी की

पहली चूड़ियां या किसी अपने का दिया हुआ उपहार, ये सब भावनाओं से जुड़े होते हैं। चूड़ियों की खनक में कभी बचपन की यादें होती हैं तो कभी जीवन के खूबसूरत पल। तो श्रोताओं, चूड़ियां केवल हाथों की सजावट नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्रेम और स्त्री सौंदर्य की पहचान है। उनकी खनक में खुशियों का संगीत है और रंगों में जीवन की उमंग। तो अगली बार आपके घर परिवार की किसी महिला या युवती को प्रसन्न करना हो तो उसे रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियों का उपहार दीजिएगा, फिर देखिएगा उनके चेहरे की मुस्कान।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारे केंद्र से अब मराठी कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

अभी आप मराठी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए श्रोताओं, आज संस्कृति वाहने की सितार पर और प्रकृति वाहने की संतूर पर जुगलबंदी सुनिए। आज आप सुनेंगे राग मियां की तूड़ी। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने संस्कृति वहाने की सितार पर और प्रकृति वहाने की संतूर पर जुगलबंदी सुनी। आज आप सुन रहे थे राग मियां की तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भोपाल में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। कल शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी है। MVM कॉलेज में NCC के पूर्व कैडेट्स का चौथा एलुमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब MP लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरीय सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जल कर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल से छोड़ा गया एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध 24 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर उड़कर उज्बेकिस्तान पहुंच गया है। इस दौरान उसने राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर तय किया। वन विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में NSG ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंधक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने OBC युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। IPS शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, PG में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसीनगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 IPS अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए। नई जिम्मेदारियां ADG से लेकर DCP स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जो हमसे नए जुड़ने वाले श्रोता हैं उनको हम बता दें एक बार अपना फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। अब से लेकर 11 बजे तक हम आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे और आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे इसी वक्त। तो हमें इंतज़ार है हमारे नए श्रोताओं का। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला फ़ोन कॉल। हेलो हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं दुबे के बगीचे से महेश रायकवार बोल रही हूँ।
0: जी महेश जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी वो सफर फिल्म का गाना सुना दीजिए, नदिया चले चले रे धारा।
0: जी जी बिल्कुल, ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। महेश जी अपने बारे में बताएं।
1: मैं मैडम ये अपने गुजराती गेस्ट हाउस में सर्विस करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और आपके खत हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं। जी जी दीदी, कितने सालों से जुड़े हैं आकाशवाणी से?
1: दीदी ये समझ लो कि जब से वो संभाला है, जब से मैं आकाशवाणी भारती का वो
0: नियमित श्रोता है।
1: जी जी, जी। आपका जैसे कार्यक्रम चलता था पहले अपने नंदा जी भेरा जी,
0: जी जी जी,
1: किसानों के लिए आता था।
0: हाँ
1: हाँ हाँ, यू आड़े भी आता अभी 5 बजे।
0: हाँ हाँ, मतलब काफी पुराने समय से आप जुड़े हुए हैं। यदि आप नंदा जी भेरा जी की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पुराने समय से जुड़े हैं।
1: जी जी जी जी
0: जी महेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है।
0: क्या बात है,
1: खुशियों भरी हो जिंदगी आपकी, यही हमने पैगाम भेजा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताएं।
1: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंजिल बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी मंसूरी जी बताए, बस अच्छे हैं। आप बताएं कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में दादा भीम का
0: जी।
1: सबको नेक राह दिखाना मेरा अल्लाह, बंदों को बुराई से बचाना मेरा अल्लाह, और यही संदेश अभी तक पहुंचना चाहिए और जाना भी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, तो आपका संदेश पहुंचाते हैं सब तक, सुनते हैं ये गीत। धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैडम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, भंडारी जी बोल रहे हैं?
1: हाँ भंडारी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बताएं। बस अच्छे हैं आप, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज हम पुरानी फिल्म में सुहागन उनका गाना सुना जाऊंगी, लता मंगेशकर का, बहुत प्यारा मीठा गीत है
0: जी। गीत के बोल बताएं।
1: एक दिल मचल मचल के तू रोता है जार जार क्या, अपना चमन उजड़ गया आती है बार बार क्या, ऐसा बात है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है।
1: और ये नहीं, इसमें एक नई बात है कि संगीतकार है लक्खीराम, जो बहुत कम लोकप्रिय हुए है।
0: अच्छा।
1: और गीतकार थे बूटा सिंह, ये बहुत कम कच्ची हुए थे। इन दोनों ने मिलकर गीत लिखा था, उस समय का ये सजावार गीत था।
0: क्या बात है,
1: बहुत चला है, लोगों ने पसंद भी किया।
0: जी जी जी जी।
1: जब जब ये गाना सुनते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, दिल जम से भर जाता था। और लता मंगेशकर की कंठ से निकली हुई ये आवाज, जो 7 साल हो गए हम आज भी सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है।
1: दूसरी बात ये, आकाशवाणी को 22 मई को 71 साल पूरे हो गए हमारे, उसके स्टाफ को बधाई।
0: आपको भी बधाई। देखिए, रेडियो तो आपका ही है, तो 71 वर्ष पूर्ण होने की हम सभी श्रोताओं को बधाई देते हैं। आप लोगों की वजह से रेडियो जिंदा है और रहेगा।
1: और हमें भी 22 मई को 71 साल आकाशवाणी से जुड़े हुए निरंतर कार्यक्रम पूरे पूर्ण करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: स्थापना दिवस का ही कार्यक्रम हम लगे हुए हैं, तो कभी भी लागा नहीं किया कार्यक्रम सुनने के लिए।
0: क्या बात है।
1: और काफी संघर्षों के बाद आकाशवाणी तो आज तक मंदिर पा सके हैं।
0: जी जी जी जी, मतलब इतने पुराने श्रोता हैं आप, लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, और ये आप लोगों का प्यार ही है जो आकाशवाणी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है।
1: आज मेरी उम्र 84 चल रही है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, 84 में चल रहा है मैं उम्र, और अभी भी कार्यक्रम सुनने का जुनून वही बाकी था जो 25 साल जवानों में था।
0: जी जी जी जी, और यही संगीत है जो आपको स्वस्थ रखता है, ये थेरेपी है आपके लिए।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जब भी आपको आंखों में नींद नहीं आती तो हम पुराने गीत सुन के आंखों में नींद की खुमारी आई जाती है।
0: क्या बात है।
1: ये शोक बाप हमें जारी है, अंतिम सांस तक ये शोक प्रार्थना करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लंबा समय आप दीर्घायु हो, हमारी यही कामना है। और ये रेडियो भी सालों साल बरसों बरस तक यूं ही चलता रहे, हमारी ये भी कामना है।
1: हमें ये कामना भी है कि ये स्थापना दिवस 100 साल तक इन्हीं शान से चलता रहे और अपना नाम से अपना नाम रोशन कर अपना झंडा गाड़ ले, ये हम कामना करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हम भले रहेंगे रहे, लेकिन 100 साल तक हमारी बधाई उनके साथ निरंतर रहेगी और हमेशा रहेगी, ये हमारी कामना कर रहे हैं।
0: धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आपको सुनवा रहे हैं भंडारी जी आपकी पसंद का गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: हाँ जी रानू जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगी?
1: हाँ, मूवी का नाम है राबता और गाने के बोल हैं मैं तेरा बॉयफ्रेंड।
0: जी, आपको ये गीत ज़रूर सुनवाएंगे। अपने बारे में बताइए रानू जी।

0: मैं हाउस मेकर हूँ
1: अच्छा,
0: जी।
1: फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: मेरा एक बेटा है, हस्बैंड है, मतलब हम तीनों हैं ऐसा।
1: अच्छा,
0: सास ससुर एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, और जेठ जिठानी है, वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, मतलब।
1: अच्छा, हाँ। और कितनी देर संगीत का साथ रहता है आपका?
0: मुझे ना फोन इन प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है यही, और मैं जैसे कि किचन में रहती हूँ तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, तो मैं मतलब खाना बनाते बनाते म्यूजिक भी सुनती हूँ
1: अच्छा,
0: ऐसा।
1: म्यूजिक सुनती हैं खाना बनाते बनाते और फोन इन प्रोग्राम में विशेष रूप से भाग लेती
0: हाँ,
1: हैं।
0: और नंबर तो क्या है, मैं रिडायल पर छोड़ देती हूँ
1: अच्छा,
0: तो फिर कनेक्ट हो जाता है। ये तो है, मतलब बार बार कॉल नहीं लगा सकते क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: बार बार फिर डिस्टर्बमेंट होता, तो मैं रिडायल पर छोड़ देती हूँ।
1: अच्छा। देखिए, आपने उन श्रोताओं को ये तरीका बता दिया जो कहते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं लगता, तो ये एक तरीका है जिससे कनेक्ट हुआ जा सकता है।
0: जी,
1: जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा रानू जी आपसे बात करके। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
0: ओके, नमस्ते।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो श्रोताओं, अब से लेकर 11 बजे तक हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। लेते हैं आज का अगला फोन कॉल। हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: गुमास्ता नगर इंदौर से अनिल कौशल्य।
0: अनिल जी बताएं कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज हमको उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गीत सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक और गीत है ए मेरे हमसफर।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है।
1: इस समय में है और वहीं से आपसे बात कर रहे हैं, हम बैंक में नौकरी करते हैं।
0: जी जी जी, तो आपके काम में कोई रुकावट नहीं आती? आप बात कर रहे हैं हमसे और
1: दूर से बात।
0: जी जी,
1: दूर से बात कर, थोड़ा दूर से बात कर रहे हैं इसलिए कोई रुकावट नहीं है।
0: कोई रुकावट नहीं, अच्छा। कयामत से कयामत फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहा है आपने?
1: ए मेरे हमसफर।
0: ए मेरे हमसफर, जी जी। अपने बारे में बताएं अनिल जी।
1: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को?
0: हाँ, आप अपने बारे में बताएं हमें।
1: हम बस इंदौर में ही रहते हैं और बैंक में नौकरी करते हैं, इसलिए बैंक में है, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, और कितना रेडियो सुनते हैं?
1: सुबह शाम सुनते हैं, दिन में तो बैंक में रहते हैं।
0: अच्छा बढ़िया, चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए अपने साथियों के साथ। धन्यवाद फोन करने के लिए अनिल जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन। नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: सपना बात कर रही हूँ, गुना से।
0: गुना से
1: जी?
0: जी सपना जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम फिल्म का नाम है ढोलन प्यारे।
0: जी जी,
1: और गाने के बोल रहे हैं इसी का डर के सॉन्ग सुन रहे
0: हैं। अच्छा अच्छा,
1: और मैम आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ, बस ऑफिस जाने के लिए निकली रही थी तो मैंने सोचा कॉल कर लेती हूँ।
0: क्या बात है सपना जी, क्या करती हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं महिंद्रा फाइनेंस में हूँ।
0: अच्छा जी, और किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैम मैं कैशियर हूँ।
0: अच्छा
1: जी
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। क्या वर्किंग आवर्स होते हैं आपके?
1: जी मैं 11 बजे से जाती हूँ 5:30 बजे तक।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरा ज़्यादातर वर्क कंप्यूटर का रहता है।
0: अच्छा
1: जी
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। और कितना संगीत सुन पाती हैं?
1: मैं संगीत को थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं।
0: ज़्यादा नहीं। फोन इन प्रोग्राम पसंद है आपको?
1: हाँ नहीं है, नहीं है, सुन लेती हूँ सारे
0: अच्छा,
1: प्रोग्राम
0: हाँ,
1: जब टाइम रहता तो।
0: जी, बहुत अच्छा लगा सपना जी आपसे बात करके। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, राजाराम नगर देवास से
0: जी
1: दिल्ली।
0: राजेश जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे।
1: ये बाबी पिक्चर का गीत है दीदी, ए फंसा जिसका झूठा घर संसार, ऐसा गीत है। अरुणा ईरानी से फिल्माया हुआ गीत है और लता जी की आवाज में है,
0: अच्छा,
1: और आनंद बख्शी साहब है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया हुआ गीत है।
0: जी।
1: और आकाशवाणी 22 मई को स्थापना दिवस है आकाशवाणी का,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: और सभी जो भी मतलब इसमें सहयोग दे रहे हैं उनका सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ, और सभी श्रोताओं सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि उस दिन वहाँ पधारे और उसकी खुशी मनावे। मतलब 71-72वां स्थापना दिवस है, हम तो आ ही रहे हैं जैसे 2-3 साल से लगातार, और अब भी आने की कोशिश करेंगे
0: अच्छा, जी।
1: जी। तो पहले से ही अग्रिम में शुभकामना देता हूँ आपको और
0: आप
1: सभी
0: सभी श्रोताओं को भी
1: सुनने
0: हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी के 71वें
1: श्रोताओं
0: जन्मदिवस
1: मनाए,
0: की।
1: आगे खुशी मनाए और मतलब आगे ऐसे ही कारवा बढ़ता रहे अपना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही कारवां बढ़ता रहे और श्रोताओं का कारवां भी बढ़ता रहे और आकाशवाणी का कारवां भी बढ़ता रहे।
1: और लंबा चलेगा ये सफर, तो ऐसी हम इच्छा ही रखते हैं और जश्न मनाते ही हर साल, और अब के भी मनाएंगे आएंगे दिन
0: चलिए,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं नंदिनी की बात कर रही हूँ सागर से।
0: जी नंदिनी जी, बताएं कौन सा गाना सुनेंगी?
1: हाँ, मूवी का नाम है आज की तू और सॉन्ग है तुम ही हो।
0: जी जी अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना सुनना है आपको।
1: जी मैम, और आप कौन बात कर रही हैं?
0: मैं शालिनी बात कर रही हूँ।
1: ओके, मैंने अपना ट्राई किया और मेरा फोन लग गया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशकिस्मत है आपकी, आपने ट्राई किया और आपका फोन लग गया।
1: जी, क्योंकि मेरी दीदी का कॉल आया था तो मैंने सोचा कॉल ही कर लूं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। ये कार्यक्रम का अंतिम गीत होगा, तो सुनते
1: ओके
0: हैं
1: मैम,
0: रेडियो सेट पर। धन्यवाद फोन करने के
1: नमस्ते।
0: लिए। नमस्ते।

0: इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति कविता रावत की है।
3: श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से उठाइए फोन और कॉल कीजिए 2660902 पे, और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के चंद गीत। हेलो।
4: हेलो।
3: हाँ जी नमस्ते।
4: जी नमस्ते।
3: कौन साहब बोल रहे हैं?
4: किराना तामी
3: जी।
4: जी मैं कहते चंदवा मंदिर। हेलो।
3: हाँ जी बोलिए।
4: आवाज नहीं आ रही है इसके।
3: हमको तो आ रही है आपकी आवाज।
4: आ रही है।
3: हाँ
4: जी जी जी अभी आ रही है।
3: हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं?
4: जी मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ मैडम जी।
3: सेंधवा से देवीदास जी।
4: जी
3: जी देवीदास जी, और सुनाइए क्या हाल है आपके?
4: जी बढ़िया हाल है मैडम जी।
3: और कॉल कितनी बार लगा चुके हैं आप आकाशवाणी में?
4: कम से कम 10 से 12 बार, 10-12 दिन में लगा है।
3: अरे वाह। तो कॉल आपकी बात कब हुई है? एक हफ्ते पहले हुई थी या बीच में हो चुकी है?
4: जी एक हफ्ते पहले हुई थी।
3: चलिए फिर ठीक है, हम आपसे बात कंटिन्यू कर सकते हैं। बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
4: जी मुझे गीत सुनना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब।
3: नसीब। अच्छा नसीब का कौन सा गीत?
4: वो जो नई वाली नसीब।
3: अच्छा नई वाली नसीब।
4: हाँ
3: तो गीत बताइए ना कौन सा।
4: शिकवा नहीं किसी से शिकायत है, किसी से गिला। हाँ
3: शिकवा नहीं किसी से, ठीक है। कुमार सानू की आवाज में है जो गीत। जी जी बिल्कुल, आपका गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे से जो प्रोग्राम आएगा उसमें आप अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं।
4: जी मैडम।
3: ठीक है देवीदास जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
4: नमस्कार।
3: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते।
1: हरदयाल जाटव, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: हरीलाल जाटव, क्या नाम बताया आपने? हरदयाल
1: हरदयाल जाटव।
0: जाटव। हरदयाल जाटव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे 4-5 दिन पहले ही बात हुई है।
1: नहीं, मैडम जी, मैंने 1 तारीख को बात की थी।
0: अच्छा, 1 तारीख को बात की थी।
1: हाँ,
0: चलिए।
1: शनिवार को भी। आज 17 तारीख है ना।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। और क्या हाल है
1: हम
0: आपके?
1: बस
0: हाँ,
1: बढ़िया है मैडम जी। गर्मी के मार बुरा हाल है।
0: गर्मी में तो सभी के बुरे हाल है। एसी
1: अब
0: कूलर सब फेल हो रहे हैं इसके आगे।
1: गर्मी में तो जहाँ मान लो कि लाइट आ रही जा रही चली जाती है 2 2 घंटे 3 3 घंटे के लिए, तो
0: वही।
1: और घर से बाहर निकलो तो गर्मी, भीतर रहो तो गर्मी।
0: हाँ वही तो।
1: आप कैसी हैं मैडम?
0: हम बहुत अच्छे हैं, बस चल रहा है काम। गर्मी में रहते हुए सारे काम, अपने कामों में तो कोई रुकावट आती नहीं है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। है ना,
1: काम तो मैडम, काम तो ऐसा कि वो तो जिंदगी भर लगा है,
0: लगा
1: करो ना
0: रहता है
1: करो तो
0: वो।
1: जो काम तो जिंदगी भर लगा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमको सुना दीजिए आंटी नंबर वन का।
0: अच्छा, आंटी नंबर वन।
1: हाँ जी,
0: उसका कौन सा गीत?
1: बुलबुला रे बुलबुला, मैं तेरी बाहों में बुला।
0: अच्छा, बुलबुला। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे। कल के प्रोग्राम में आप अपना ये गीत सुन पाएंगे। ठीक है
1: मैडम जी,
0: हरदयाल
1: अपना
0: जी?
1: ना अपना नाम।
0: हाँ, मेरा नाम कविता रावत है।
1: आपसे बहुत दिन से मुलाकात हुई, आप पहली बार बात हो रही है आपसे। हाँ
0: जी। नहीं, शायद 1 तारीख को जब आपने कॉल किया था ना, तब हमसे ही बात हुई थी।
1: अच्छा,
0: हाँ, तभी हमें आपका नाम भी याद है।
1: नहीं माने एक मैडम जी आती है कविता रावत, एक और कविता आपसे।
0: नहीं, कविता नाम की एक ही अनाउंसर है यहाँ पर।
1: अच्छा,
0: चलिए, ठीक है हरदयाल
1: तो
0: जी।
1: माने चलो ठीक है जी,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: अशोक सिंह
0: अशोक सिंह जी।
1: जी, मैडम कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए क्या हाल है
1: मैं भी
0: आपके?
1: ठीक हूँ, गर्मी का मजा ले रहे। गर्मी पड़ रही जोरों से, अपनी चरण सीमा जी।
0: देखिए हर मौसम का अपना अलग-अलग मजा है।
1: मजा लेने के ये जो प्रकृति ने बनाया
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रकृति ने बहुत सुहावने मौसम बनाए थे, हम लोगों ने अपने स्वार्थ से परिपूर्ण
1: हाँ,
0: होकर
1: जहाँ
0: खराब
1: के
0: कर दिया
1: अधिकार
0: है।
1: सब उनको, वजह अपनी ही है सब।
0: वही वजह अपनी है खुद।
1: ठीक
0: तो और क्या हाल है आपके, घर में सब कैसे
1: है
0: हैं?
1: मैडम, बस सब परिवार सही है। आपके परिवार और आकाशवाणी टीम भोपाल जी।
0: जी हाँ, गीत बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गीत,
0: गीत कौन सा सुनेंगे? फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है ना।
1: हाँ गीत सुनवा दीजिए मैडम। गीत सुनवा दीजिए, पलकों की छाँव में। हाँ,
0: पलकों की छांव में, ये फिल्म का नाम है?
1: डकिया डाक लाया।
0: अच्छा, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ मिल गया, डाकिया डाक लाया।
1: किशोर कुमार की आवाज में है ना?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। और
1: नहीं तो
0: बड़ी,
1: देश प्रेमी का सुनवा दीजिए जी।
0: नहीं, आपने ये बहुत ही उम्दा पसंद है आपकी, छाट कर लाएं ये गीत।
1: हाँ, बहुत याद आती, पहले चिट्ठी पत्रियों को
0: बिल्कुल
1: आता था, पोस्टमैन याद करते थे। अभी भी
0: हाँ
1: आते हैं और कम आते हैं।
0: जी। चलिए अशोक सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद दोबारा आपसे बात होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: अब तो
0: नमस्ते।
1: काफी दिन हो गए मैडम जो की
0: जी
1: है।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: अरे नमस्कार।
0: नमस्ते चांद भाई।
1: अरे कमाल हो गया मैडम जी। ये मान के चलिए, कहते हैं ना दौलत की तमन्ना है, ना दौलत की तमन्ना है, ना शोहरत की है आरजू, और आपसे बात हो जाए मैडम जी तो सबसे बड़ी जुफ्तजू।
0: अरे वाह चांद भाई, बहुत अच्छी शायरी कर दी है आपने तो।
1: अरे अब आपसे बात कर लेता हूं तो समझ लो कि मुझे लगने लगता है कि नई जिंदगी मिल गई। समझ,
0: बहुत टाइम बाद कॉल किया है आपने ना।
1: अब तो क्या करें, अब अंकुश तो लगा दिए तो उसके तो पाबंदी करना पड़ेगा। प्रतिबंध आपने लगाया है तो उस पर हमें अमल भी करना पड़ेगा।
0: नहीं, प्रतिबंध नहीं है, ये दूसरे सब श्रोताओं के लिए थोड़ा सुविधाजनक बना दिया गया है, आप उस
1: तो
0: पर
1: हम
0: बिल्कुल
1: तो
0: भी
1: खुश हैं मैडम जी, आपसे बताएं सब में खुश हैं। फोन लग
0: सब में।
1: जाए तो, ना
0: देखिए,
1: लगे
0: आपका
1: तो
0: आज भी कॉल
1: कान
0: लग
1: में
0: गया
1: सुन।
0: और बात हो रही है आपसे, है ना।
1: लेकिन हो गया, अगर काफी इंतजार के बाद कोई चीज या कोई वस्तु मिले मैडम जी तो उसका मजा ही कुछ और अलग होगा।
0: बिल्कुल। अच्छा, हमारे श्रोताओं को बता तो दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि हम
1: अब आपने तो सब कुछ बता दिया, पहले से ही बता दिया कि चांद मोहम्मद भाई बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं
0: बिल्कुल
1: कि ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना, आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: बिल्कुल
1: भोपाल
0: बिल्कुल। अच्छा चांद भाई, अब ये बताइए कि आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: का। अच्छा अभी मुझे गलतफहमी हो रही है क्योंकि आप डबल रोल हैं, क्योंकि कविता रावत हो सकती हैं या
0: बिल्कुल,
1: सुनीता।
0: कविता रावत, सही पकड़े हैं आप।
1: अरे तो मैडम जी ये मैं बता दूं, सत्य
0: हाँ
1: बता दूं, बातें हो जाएं क्योंकि काफी दिन में हुई है, गीत भले कम बजाइएगा, मैं बता दूं मैडम जी आपको कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी लखनऊ में दीप्ति जोशी,
0: हाँ
1: और मथुरा वृंदावन में रश्मि जी, और आकाशवाणी भोपाल में सुनीता और आप, और विविध भारती मुंबई में ममिता सिंह,
0: अच्छा
1: एकदम इतनी जबरदस्त आवाज, मिलती जुलती हमें लगता है कि आप बहने हैं एकदम, बिल्कुल आवाज में
0: अरे
1: कोई भी गलत फहमी नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है। और ये पकड़ हमें जरूर रहती है क्योंकि हम आकाशवाणी के इतने गुलाम हैं मैडम जी, बहुत दूर दूर तक फोन लगाते हैं, सुनते हैं,
0: जी
1: क्योंकि इसीलिए आप लोगों की आवाज पहचानते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, और
0: हाँ,
1: आज अकेले हैं, आपकी भाभी जी नहीं है तो थोड़ा सूना सूना लग रहा है, लेकिन अब
0: अच्छा
1: गाना बता दें,
0: हाँ
1: फिल्म का नाम है मैडम जी, कविता मैडम जी आपसे बताएं, वो है दुश्मन फिल्म है
0: अच्छा
1: ये उनकी, राजेश खन्ना की।
0: अच्छा अच्छा अच्छा दुश्मन ना करे
1: तो
0: दोस्त ने जो काम किया है।
1: नहीं, वो तो आखिर क्यों कहा है, बाकी तो मैं
0: अच्छा
1: आपको
0: अच्छा
1: एक एक कुथाना बांध के रख दूंगा
0: हाँ हाँ
1: मैडम,
0: बिल्कुल सही
1: ये
0: बात है।
1: दुश्मन है और उसके किशोर कुमार की आवाज है, और गीत के बोल हैं कि वादा तेरा वादा,
0: अच्छा
1: वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, जे वाला मैडम जी।
0: बहुत अच्छा गाना है ये तो, और बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत, और यदि ये गीत नहीं मिला तो
1: तो फिर आप कोई भी सुनवा देंगे दौड़ेगा, लेकिन मिल जाए कोशिश करिए, नहीं तो फिर रोटी का सुनवा देना
0: मिलेगा
1: कोई,
0: मिलेगा
1: रोटी
0: वैसे ये
1: कोई,
0: गाना।
1: हाँ नहीं तो फिर कोई भी सुनवा देना दौड़ेगा, फोन अब शामिल करिएगा मैडम जी, आपको पूरे
0: बिल्कुल, आप
1: आकाशवाणी
0: बिल्कुल
1: मध्य प्रदेश
0: कल
1: भोपाल
0: कल
1: से।
0: अपना प्रोग्राम सुनिएगा, आपको मिलेगा ये अपना
1: जी
0: प्रोग्राम
1: जी
0: सुनने को।
1: धन्यवाद मैडम जी, वो हो
0: जी
1: गया फोन 10-15 दिन में लगा है तो का
0: चलिए,
1: बहुत अच्छा है, रोज रोज में मजा नहीं
0: जी
1: आता।
0: जी जी चलिए,
1: और एक
0: धन्यवाद
1: बात और बता दे मैडम जी कि
0: जी।
1: ये प्रेमदास बाबा जी हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ में गाना सुनते हैं, और क्या है कि
0: हाँ
1: क्योंकि गाने बदलते रहो मैडम जी, और ये सब बदलते रहो तो कार्यक्रम की रोचकता बढ़ी रहती है, बनी
0: बिल्कुल
1: रहती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, और ये गाना
0: चलिए
1: काफी दिनों से सुनने को नहीं मिला था मैडम जी, तो इसलिए
0: बिल्कुल
1: हमने
0: बिल्कुल
1: जो है,
0: सुनवाएंगे।
1: हाँ कोई
0: ठीक
1: दिक्कत
0: है,
1: तो नहीं
0: नहीं
1: है।
0: कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कॉल करने के
1: और
0: लिए धन्यवाद चांद भाई, हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे हुए।
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है
1: आपको प्रणाम दे दीजिए
0: जी,
1: मैडम जी,
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते अमिता दीदी। लास्ट बार
0: कभी
1: आपसे ही बात हुई थी। देखिए, आज लगाया, बहुत देरी लगी रहती हूँ लग जाता फोन।
0: ये बात सही है। कुछ श्रोता हमारे सच में बहुत लकी हैं,
1: क्योंकि
0: उनका
1: आपसे
0: कॉल।
1: बात हुई थी उसके बाद आप ही फोन लगाए। 15 दिन तो हो गए आराम से।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: शुभ नाम बताइए अपना थोड़ा
1: मैं
0: सा।
1: बरेला की वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ दीदी।
0: हाँ कहाँ से?
1: बरेला जबलपुर से
0: बरेला जबल।
1: वंदना उपाध्याय बोल रही दीदी। बेल का शरबत पूछा था आपने।
0: नहीं, आप मुझे
1: हाँ,
0: गलत समझ रही हैं। आप कौन सी दीदी समझ रही हैं?
1: अमिता दीदी।
0: अमिता नहीं, कविता। हम लोगों की आवाज में फर्क नहीं दिखा आपको?
1: मुझे तो अभी वैसी लग रही। अच्छा, कविता दीदी है, आपसे मेरी
0: जी
1: बात हो चुकी है।
0: हाँ, हम लोग
1: हाँ।
0: तो बहुत अलग हैं। आपने कैसे हमको अमिता दीदी समझ लिया?
1: तो क्या हुआ
0: नहीं
1: ना,
0: नहीं
1: आप
0: वो बहुत
1: बोल रही
0: सीनियर है, बहुत अच्छी वॉइस है उनकी।
1: बहुत अच्छी है। और मैं वही तो कोई बात नहीं।
0: चलो कोई बात
1: अमिता
0: नहीं,
1: दीदी
0: अमिता
1: से तो
0: दीदी ना
1: कविता
0: सही,
1: दीदी
0: कविता
1: से
0: दीदी सही।
1: नमस्ते कविता दीदी। आपसे भी
0: नमस्ते।
1: मेरी बात हो चुकी है वैसे तो।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: कैसे हैं दीदी आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आपके क्या हाल है।
1: बढ़िया है।
0: गीत बताइए, आज कौन सा गीत सुनने का मूड है आपका?
1: कौन सा गीत? रेडियो बंद करूं पहले मैं।
0: कोई सा भी अपनी पसंद का बताइए।
1: पसंद का अब आपसे बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ

0: कौन सा गाना बोलू, पहले बोलती ये बोला वो बोलूंगी ऐसा सुनूंगी, ठीक है मैं बोलती हूँ वो वाला सुना दीजिए, चुरा लिया है तुमने
1: अच्छा,
0: जो दिल
1: यादों की
0: को।
1: बारात फिल्म का।
0: हाँ
1: ठीक है।
0: और आप बोल रही थी कि रानू गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ कि वो फोन क्यों नहीं कर रही है।
1: हाँ, मैं भी इंतजार
0: हाँ
1: कर रही हूँ भाई, बहुत लंबा टाइम हो गया है, क्यों नहीं आ रहा है
0: उनके लिए
1: फोन।
0: गाना डेडिकेट, और हमारे दो फ्रेंड हैं विपिन कटारे जी
1: हाँ
0: और नंदिनी,
1: हाँ
0: ये
1: ये
0: सब फ्रेंड सर्कल टाइप का बन गया, जब आता नहीं तो इंतजार करते कि यार इसका फोन
1: सच
0: आना
1: बात है,
0: चाहिए
1: सच
0: ऐसा
1: बात है। कुछ लोगों से
0: नहीं।
1: अपन भले ही मिले नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी उनसे पुराना
0: वो
1: रिश्ता
0: तो
1: है।
0: अच्छी बात करती थी, बढ़िया मस्त मजा आता था, वो लगाती थी फोन, तो
1: हाँ।
0: मैं भी वेट कर रही हूँ जैसे आप वेट कर रही हो उनके फोन का, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ, ये मैसेज रानू गुप्ता तक पहुंच जाना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: कोई
1: बिल्कुल,
0: आपको
1: कल
0: याद
1: पहुंचेगा,
0: करता
1: लेकिन
0: है।
1: कल सुनेंगे ना सब प्रोग्राम, तो कल आपका मैसेज
0: हाँ
1: पहुंचेगा और परसों कॉल करेंगे, देखिएगा।
0: हाँ
1: चलिए वंदना जी,
0: नमस्ते
1: आपसे
0: जी, बहुत
1: बातचीत
0: अच्छा
1: करके
0: लगा
1: बहुत
0: आपसे
1: अच्छा
0: बात
1: लगा।
0: करके।

0: हेलो
1: उठ तो जाओ। हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी मैम, हम ग्रामपुर जिला खड़ापुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
0: संगीता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: ग्रामपुर छतापुर से। जी
0: छतापुर।
1: जी मैम।
0: अच्छा, और कैसी हैं आप?
1: जी मैम ठीक है, आप कैसी हैं? जी
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं मैम।
0: घर का काम करना भी आसान थोड़ी ना होता है।
1: जी
0: और
1: आप
0: घर में
1: कविता
0: कौन कौन
1: मैम
0: है?
1: बोल रही हैं? कविता
0: हैं
1: मैम बोल रही हैं आप?
0: जी, कविता मैडम बोल रहे हैं, आपने पहचान लिया।
1: जी मैम, आपकी आवाज बहुत सुंदर है।
0: थैंक यू, आवाज भी सुंदर होती
1: जी मैम, जब
0: अरे वाह।
1: पसंद हो तो शक्ल सुंदर पसंद होती है। जी
0: तो आपकी नजरें बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब पता है।
1: मैम,
0: अच्छा बताओ संगीता, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रही, तो इसीलिए सुनना चाहते हैं जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।
0: ओहो, दोपहरी में पांव जले, ये वाला मिल
1: जी
0: जाएगा?
1: जी मैम।
0: ये वाला गीत है,
1: हाँ
0: सुना है पहले? कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म
1: कई
0: का
1: बार
0: है?
1: सुना है मैम।
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये गीत?
1: फिल्म तो पता नहीं, वो ऐसे ही जट की दोपहरी में पाँव जले है, सैया पाँव जले
0: चलिए कोशिश करते हैं, अगर ये गीत नहीं मिला तो
1: है। तो सुनवा देना बाल माता।
0: बाल माँ का। हाँ, ये तो गीत बहुत
1: जी
0: प्यारा है।
1: आपसे बहुत दिनों बात हुई, हमको तो याद
0: बाल माँ
1: नहीं
0: का
1: है
0: कौन सा, ये
1: वैसे
0: तो
1: भी, लेकिन
0: बताओ।
1: और मैम जी हमसे तो होती रहती है। जी
0: अच्छा, ये
1: आपसे
0: तो बताओ
1: कोई
0: कि है ना, बालमा फिल्म का कौन सा गीत?
1: सा भी सुनवा देना।
0: अच्छा ठीक है ठीक है।
1: जी
0: चलो संगीता जी, कॉल किया आपने और बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, दिल खुश कर दिया।
1: जी मैम, हमको तो आपसे और मैम से किसी भी ऐसी बात हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा ही खुशी होती है।
0: चलो, थैंक यू कॉल करने के
1: लेकिन
0: लिए।
1: जी जितना हमें गाना सुनने में वो नहीं है, लेकिन आपसे बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी
0: चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: नमस्ते जी।
1: सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: शेख
1: हैदर खान?
0: जी, आपसे शायद पहली बार बात हो रही है शेख हैदर खान जी।
1: नहीं, मैडम, मैं लगाता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिल जाता है। तो मैडम,
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
1: मैडम मैं तो यूं तो किसान हूँ, खेती का काम है,
0: अच्छा जी।
1: और आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता भी हूँ मैं। हाँ,
0: चलिए, तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये फिल्म निकाह का गीत तो सुना दीजिए।
0: हाँ
1: ये दिल की आरजू थी कोई दिल रुबा मिले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में गीत है।
0: हाँ बहुत प्यारा गीत है ये।
1: हाँ
0: बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन कल सुन पाएंगे आप? ये 11 से 12 बजे के बीच में ये प्रोग्राम
1: हाँ
0: है।
1: सुन लेना ना मैडम, जो पे सुनता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनिएगा और 1 हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: ओके ओके, है ना।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते।
1: बाग से बोल रही हूँ मैम,
0: कहाँ से?
1: बाग जिला धार,
0: अच्छा, धार जिला से। कौन बोल रही है?
1: बाग। हाँ,
0: कौन बोल रही है
1: हीरू जी बोल रही,
0: जी?
1: हीरू।
0: हीरू।
1: हाँ, बाग से।
0: अच्छा। बताइए, क्या हाल है आपके?
1: आप बढ़िया? आपके कैसे? बढ़िया हो के?
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया।

0: और धार में कैसी पड़ रही है गर्मी?
1: गर्मी तो इधर भी है था।
0: बहुत ज्यादा है ना।
1: हाँ।
0: कौन सा गीत सुनना है आज?
1: कौन सा गीत? वो क्या नाम रे, कौन सा, कोई सा भी सुना दो आप।
0: कोई सा भी सुना दे।
1: हाँ।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप बहुत ही अच्छी बात बोल रही हैं। हम अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवाएंगे आपको, लेकिन निराश नहीं होंगी, वो गीत आपको जरूर पसंद आएगा।
1: हाँ।
0: ठीक है हीरो,
1: मेरा पति मेरा देवता है वो सुना दो।
0: अच्छा चलो, मेरा पति मेरा देवता है,
1: जैसा है मेरा पति।
0: हाँ चलिए ठीक है ठीक है, वही सुना देंगे वही सुना देंगे। चलिए कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: धन्यवाद मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति कविता रावत की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने

0: ने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर हैं। एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच और उनके साथ भारत की मित्रता के दायरे को बढ़ाएगा। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 16 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, वहीं मतदान 18 जून और मतगणना 22 जून को होगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रदेश में आज व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझ सकेंगे। वहीं मौसम की अगर बात करें तो प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा सहित प्रदेश के 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर हमने लिया है फिल्म साजन से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म साजन का ये गीत।

साहिबान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत था शिव हरी का। पसंद आप सभी श्रोताओं की थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। साथ ही राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश महाजन। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। आप सभी की फरमाइश है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत सुनने की, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल ने। बोल रानी मलिक के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, लीजिए अब सुनिए फिल्म त्रिदेव का गीत मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीता बिरक की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की। तो लीजिए सुनिए फिल्म त्रिदेव का ये गीत।

बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का गीत। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं, गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर। आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 5वीं कड़ी।

0: श्रोतागण प्रणाम। कैसी लग रही हैं छोटी छोटी कहानियाँ? आनंद आ रहा है ना? पिछली कथा में मैंने सुनाया था कि दमनक ने करकट को छोटी छोटी कहानियों से ये समझाया कि बुद्धिर्या से बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है बलवान भी वही अधिक होता है। अब आगे।
1: हाँ दमनक, तो आप कहते हैं उपाय द्वारा संजीवक और पिंगलक की मित्रता तोड़ी जा सकती है?
2: हाँ मित्र, मैं भी अपने बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डालकर उनकी मैत्री को भंग कर दूंगा।
1: यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलिए, हमारा मार्ग मंगलमय हो।
3: आओ आओ दमनक, क्या समाचार हैं? आजकल दिखते नहीं, साथियों के क्या समाचार हैं?
4: श्रीमान को तो अब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है और ना ही किसी अन्य पशु का। फिर भी अभयदान हो तो कुछ कहूं महाराज?
3: निर्भय होकर कहो दमनक, हमें ज्ञात है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं।
4: मैं आपकी शांति भंग करने कभी नहीं आता महाराज, परंतु राज कार्य की हानि देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा तो मैं चला आया।
3: आपको बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हैं वही कहें।
4: देव, वो संजीवक आपके प्रति विद्रोह का भाव रखता है। वो आपको मारकर संपूर्ण वन प्राणियों का स्वामित्व धारण करना चाहता है।
3: दमनक, तुम्हें ज्ञात है तुम क्या कह रहे हो। संजीवक और मैं भ्रातुल्य मित्र हैं, ये सब तुम्हें कैसे पता चला?
1: महाराज, मुझे वो अपना विश्वस्त समझता है एवं मुझे इस जंगल के मंत्री पद का लोभ भी दिखाता है महाराज।
3: संजीवक मेरे प्राण हैं, वो मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रख सकता है, ये मेरी कल्पना से परे है। इतना सब कुछ सुनने पर भी उसके लिए मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे प्रिय व्यक्ति के विपरीत आचरण करने पर भी वो प्रिय ही लगता है।
4: इसीलिए तो राजद्रोह जैसा दोष उत्पन्न होता है। एक बात बताएं महाराज, आप किसी विशेष गुण के कारण उस निर्गुण संजीवक को अपने सन्निकट स्थान देते हैं। देव, यदि ऐसा सोचते हैं कि वो रिष्टपुष्ट बलवान आपके शत्रुओं को मारने में आपकी मदद करेगा तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो शाकाहारी है और आप मांसाहारी हैं। अतएव महाराज, मेरी मानिए तो कोई उपाय करके आरोप लगाकर उसे खत्म कर दें।
3: मैं क्या उपाय करूं? दमनक, उसे मैं अभयदान दे चुका हूँ, स्वयं उसकी हत्या कैसे करूं? संजीवक मेरा मित्र है। सच कहते हैं कि पहले तो किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए, और यदि स्नेह कर ही लिया गया है तो उसमें प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। स्नेह से किसी को ऊपर चढ़ाकर गिराना नहीं चाहिए।
4: जी महाराज।
3: तभी तो द्रोही होने पर भी मुझे उसके साथ विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए।
1: स्वामी, द्रोही व्यक्ति को क्षमादान देना राजधर्म नहीं है, अन्यथा राजा स्वयं ही उसके हाथों मारा जाता है महाराज। एक बात और, संजीवक के संग रहते हुए आपने राजधर्म भी छोड़ दिया है, इस कारण आपके अनुचर भी विरक्त हो चुके हैं महाराज। वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप दोनों ओर से पछताएंगे महाराज।
3: दमनक, आखिर इसके प्रमाण क्या है कि वो मुझ पर दुष्ट बुद्धि रखता है?
4: महाराज, उसने आज मेरे सामने ये निश्चय किया है कि कल प्रातः काल होते ही वो आपको मार डालेगा। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराज, कल प्रातः

काल वो संजीवक क्रोध से लाल मुख और आंखें लेकर अपने अधरों को फड़फड़ाता हुआ आपकी ओर देखेगा। आप समझ लेना, फिर जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। मुझे आपको सूचित करना आवश्यक था, सो ही मैंने किया। आखिर आप जाने महाराज।

0: क्या बात है संजीवक जी, कुछ शांत प्रतीत होते हैं।
1: आओ मित्र, आपका स्वागत है। सकुशल हैं?
2: सेवक जन की कुशलता होती कहाँ है?
1: आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मित्र, मंत्रियों के लिए गुप्त मंत्रणा का उद्घाटन करना उचित नहीं। जो व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त होने पर भी राजा की रहस्यात्मक बातों को सार्वजनिक कर देता है, वो राजकार्य में हानि के अपराध में नरकगामी होता है।
1: आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो महाराज का मित्र हूं।
0: आपका हृदय तो निश्चल है, परंतु वो पिंगलक आपके ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है। उसने आज एकांत में मुझसे कहा भी है कि वो कल प्रातःकाल होते ही आपको मारकर बहुत दिनों बाद सारे साथियों को तृप्त करे। मैंने उन्हें कितना समझाया कि ये कृत्य उचित नहीं है, आप पर मित्र द्रोह का पाप लगेगा, तो वो मुझे बुरा भला कहने लगे और कहा कि वो मांसाहारी हैं और आप शाकाहारी, इसी कारण आप उनके जातिगत शत्रु हैं और शत्रु को किसी भी उपाय से मारना पाप नहीं है। इसी कारण मैंने आपके सामने रहस्य खोल दिया। अब आप जो उचित समझे वो करें।
1: दमनक, क्या यह संभव है किसी के इतने निकट रहकर उससे बैर किया जा सके? मैं तो चेतना शून्य हो रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी मूर्खता से यह समझता है कि मैं राजा का प्रिय हूं, उसे सींग रहित वृषभ के समान समझना चाहिए।
0: हाँ।
1: मैंने पिंगलक के साथ मित्रता करके बहुत बड़ी भूल की है। अब तक तो उसके साथ ही मेरे विरुद्ध हो चुके होंगे। अब तो मेरे समझाने का भी कोई अर्थ नहीं होगा।
2: हाँ। सही कह रहे हैं।
1: अब मुझ जैसे निरपराध व्यक्ति के विषय में कोई बातें नहीं सुनेगा।
0: मित्र, यदि यही बात है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पिंगलक से मिलें, अपने वाक चातुर्य से उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। मैं आपके साथ हूं।
1: तुम्हारा प्रेम मैं समझ सकता हूं। परंतु सभासद अगर दुष्ट हो तो भले लोगों का वहां रहना कठिन होता है। वे किसी न किसी उपाय से भले लोगों को मार डालते हैं।
2: ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: तो सुनो, किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। उसके बाघ, श्रीगाल और काक, ये तीन अनुचर थे। एक दिन उन लोगों ने कथनक नामक एक ऊंट को देखा जो वन में अकेले भटक रहा था।
0: अच्छा।
1: उसे देखकर मदोत्कट सिंह ने कहा,
3: ये तो कोई अपूर्व जीव है, लगता है साथियों से बिछड़ गया है। ये वन का है या ग्राम जीव?
4: स्वामी, कथनक नाम का ये ऊंट गांव का है। ये आपका भक्ष है, आप इसको मार डालिए।
3: नहीं नहीं, मैं घर आए अतिथि को नहीं मारता। शत्रु भी अगर अतिथि बनकर आए तो उसे मारने से पाप लगता है, अतः उसे अभय दान देकर यहां ले आओ, जिससे मैं उससे यहां आने का कारण पूछ सकूं।

0: अब जब आप गांव से वन आ ही गए हैं तो अब पुनः गांव जाकर भार ढोने के कष्टकारक काम की क्या आवश्यकता है। इसी वन में निर्भय होकर निवास करें और कोमल घास को चरें।
1: महाराज की जय हो।
2: तब से ही वो कथनक मदोत्कट एवं उसके अनुचरों के साथ सानंद रहने लगा। एक दिन मदोत्कट का किसी जंगली हाथी के साथ भीषण युद्ध हुआ। हाथी के मूसल समान दांतों के प्रहार से सिंह को बड़ा कष्ट हुआ। भयंकर पीड़ा को सहकर भी वो बच गया, परंतु शरीर के शक्तिहीन हो जाने के कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके पराक्रम के अभाव से अनुचर भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगे।
0: बाघ, शगाल, आप जाकर ऐसे किसी जीव की खोज करें जिसे इस अवस्था में भी मैं मार सकूं और आप सबके भोजन का प्रबंध कर सकूं।
3: जो आज्ञा महाराज।
4: प्रिय बाघ भाई, हम सब तो बहुत भटक चुके हैं, भूख भी लग रही है।
3: बहुत अधिक भटकने से क्या लाभ। मेरे ध्यान में एक योजना आई है जिससे हमारा पेट भी भरेगा और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
5: तो इस उपाय को बताने में विलंब क्यों, शीघ्र बताएं।
3: ये कथनक हमारे किस दिन काम आएगा। आज इसी को मारकर भोजन किया जाए।
5: हाँ, आप ठीक कहते हैं, परंतु स्वामी ने तो इसे अभयदान दिया है, आप और हम इसे कैसे मार सकते हैं?
4: मित्र काक, मैं स्वामी को समझा कर इस बात के लिए सहमत कर सकता हूँ कि वो इसे मारने को तैयार हो जाएं। आप लोग यहीं ठहरिए। महाराज को श्रृगाल का प्रणाम।
0: कहो श्रृगाल, क्या किसी जीव को खोज लाए हो?
4: स्वामी, संपूर्ण घूमकर हम वापस लौट चुके हैं, एक भी जीव नहीं मिला।
0: अब क्या किया जाए, दुर्बलता के कारण मैं अधिक परिश्रम भी नहीं कर सकता। आप सब भूख से व्याकुल होंगे।
4: भूख की क्या बात है महाराज, अब तो एक पग चलना भी शक्ति से बाहर है। आपकी दशा क्या अलग है? ऐसे में यदि आपकी आज्ञा हो तो कथनक के मास से आपके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए।
0: धिक्कार है पापी, यदि फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो तुम्हें उसी क्षण मार डालूंगा। तुम्हें ज्ञात नहीं, मैंने उसे अभयदान दिया है, उसे मैं स्वयं कैसे मार सकता हूं?
4: धृष्टता क्षमा करें महाराज, यदि आप उसका वध करते हैं तो निसंदेह दोष आपको लगेगा, परंतु यदि स्वामी भक्ति के कारण वो स्वयं जीवन का बलिदान करता है तब तो कोई दोष नहीं
0: है। ये कैसी अनर्गल बात है, वो स्वयं ऐसा क्यों करेगा?
4: अगर कथनक ऐसा नहीं करता है तो आप हम तीनों में से किसी को भी मारकर अपना भोजन बना लीजिएगा। यदि स्वामी की रक्षा में हम इतना भी नहीं कर सकते तो स्वामी के अनिष्ट होने पर हमें तो वैसे भी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा।
0: ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो।
2: फिर तीनों ने दुष्ट चाल चली और कथनक को लेकर मदोत्कट के पास जाकर बैठ गए।

0: स्वामी, हम संपूर्ण वन घूमाए, ना तो कोई जीव मिला, ना ही दिखाई पड़ा। प्रभु, आज आप मुझे ही खाकर अपने प्राणों की रक्षा करें, जिससे आपको थोड़ी शक्ति मिले और मुझे सदगति, क्योंकि अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है।
1: भगनिका, आप नारी हैं और अल्पकाय हैं, आपसे स्वामी का पेट नहीं भरेगा, अपितु जीव वध का पाप भी लगेगा। आपने अपनी स्वामी भक्ति तो दिखा दी, स्वामी से उदर पूर्ति ग्रहण करने का ऋण भी चुका दिया, दोनों लोकों में आपकी प्रशंसा भी हो चुकी। अब आप स्थान ग्रहण करें ताकि मैं स्वामी से कुछ कह सकूं।
0: आप बड़े हैं श्रीकाल भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
1: स्वामी, सेवक का जीवन स्वामी के अधीन होता है, वो समय आने पर उसे लेने से पाप का भागी नहीं होता है, तो देर ना करके मेरे शरीर से भोजन ग्रहण करके जीवन निर्वाह किया जाए और मुझे तीनों लोक में यश का भागी बनने दिया जाए।
2: मित्र श्रीकाल, आप महाराज के सजातीय भी हैं और अल्पकाय भी, नाखून लंबे होने के कारण आप अभक्ष्य भोजन हैं। थोड़ा सा अभक्ष्य भोजन करके अपना परलोक क्यों नष्ट करना? वैसे आपने कुलीन होने का जो परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है, परंतु अभी मैं स्वामी के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
1: ठीक है बाग मामा, जैसा आप चाहें।
2: महाराज, आज मेरे शरीर से भोजन किया जाए, मुझे स्वर्ग का अक्षय वास दिया जाए, पृथ्वी पर मेरे यश का विस्तार हो। अब इस विषय में कोई भी विकल्प न सोचा जाए। महाराज, मुझे ग्रहण करें, मुझे ग्रहण करें महाराज।
3: इन सभी ने मीठी बातों से स्वामी के हृदय में अपना स्थान बना लिया। प्रभु ने किसी को भी नहीं मारा। मैं भी सही समय में स्वयं को निवेदन कर दूं, मेरी बात सुनकर सब मेरी प्रशंसा करेंगे और स्वामी मुझे नहीं खाएंगे। बाग मामा, आप ठीक कहते हैं, परंतु आप भी तो नखयुक्त जीव हैं, आपके मांस को भी स्वामी कैसे खा सकते हैं? कहते हैं जो मन से भी अपनी जाति का अनिष्ट चाहता है उसका दोनों लोकों में अनिष्ट होता है। अतः मामा, आप हट जाएं ताकि मैं स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं।
2: नहीं कथनक, आप तो अतिथि हैं, आपको कैसे मार सकते हैं?
3: स्वामी, ये सभी आपके भोजन के लिए अयोग्य हैं, अतः आज मेरे शरीर से जीविका चलाई जाए। महात्मा साधुजन वर्षों की तपस्या से जिस सदगति को प्राप्त करते हैं वो एक श्रेष्ठ सेवक स्वामी के लिए प्राण देकर प्राप्त कर लेता है।
4: आप बिल्कुल सही कहते हैं कथनक, आओ साथियों, आओ। मा। मा।

0: कथनक के निवेदन को सुनकर सिंह की आज्ञा से श्रगाल तथा व्याघ्र ने मिलकर उसे फाड़ डाला। कथनक का प्राणांत हो गया। सिंह के साथ भूख से पीड़ित अनुयायियों ने कथनक को खा डाला। ये कहानी सुनाकर संजीवक ने दमनक से कहा,
1: अम्मा समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं।
2: मेरे विचार से आप कहीं विदेश भाग जाएं।
1: नहीं नहीं, जब पिंगलक क्रुद्ध है तो मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए।
2: अरे ये दुष्ट तो युद्ध के लिए प्रस्तुत जान पड़ता है। इसने अगर अपने तीखे सींगों से स्वामी पिंगलक पर प्रहार किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे अन्यत्र भेजना होगा। मित्र आप ठीक कहते हैं, पर स्वामी और भृत में संग्राम होना उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना मूर्खता है, ऐसे में अपमानित होना पड़ता है जैसे टिप-टिप को होना पड़ा समुद्र के सामने।
1: अम्मा
0: और फिर उस दुष्ट दमनक ने संजीवक के मन में पाप भर दिया। फिर उसे वहां से भाग जाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचकर सुनाने लगा, जिसमें टिप-टिप और समुद्र की कथा सुनाई। पर वो कथा आप सुनेंगे अगले सप्ताह, आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 43 साल में पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर है। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। पश्चिम एशिया संकट के बीच 20,000 मीट्रिक टन LPG लेकर एक जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। मार्च के शुरू से 12 LPG टैंकर्स और एक कच्चे तेल के टैंकर सहित 13 भारतीय जहाज स्वदेश आ चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। AI से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई। और IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही शरीर जल्दी थकने लगता है, पसीना अधिक आता है और पानी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे समय में पेट भरना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ऐसा भोजन जरूरी होता है जो शरीर को सही पोषण और ऊर्जा दे। इसी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है फॉर्मुलेटेड डाइट, यानी ऐसा संतुलित आहार जिसे शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें शरीर की उम्र, स्वास्थ्य और जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का सही संयोजन होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पर्याप्त तरल पदार्थ शामिल किए जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। इस डाइट में सामान्यतः दालें, दूध और दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, सलाद, दही, छाछ, नारियल पानी और पर्याप्त पानी शामिल होते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें कम तेल मसाले और आसानी से पचने वाला भोजन भी शामिल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में फॉर्मुलेटेड डाइट जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में ऊर्जा और पानी की कमी जल्दी होने लगती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, थकान कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो श्रोताओं, आप भी अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, फॉर्मुलेटेड डाइट डाइटिशियन की सलाह से लें एवं इसका लाभ उठाएं। पर अभी सुने ये मधुर गीत।

0: श्रोताओं, जब चिकित्सा पद्धति की बात आती है तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवा रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और स्वास्थ्य विषय पर एक भेंट वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर ऋषि मिश्रा और भेंट करता है मनीष गजबीय।
1: श्रोताओं नमस्कार। आयुर्वेद से हम सभी परिचित है, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार कार्य करता है और इसमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: ऋषि जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है और यह किस तरह से काम करती है।
2: यह चिकित्सा पद्धति सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि पुराने समय में भी बहुत लाभदायक थी और आज के समय में भी बहुत लाभदायक है
1: जी।
2: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वह है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रश्नम। इसका मतलब है हम स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
2: और साथ ही अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग का निर्मूलन कैसे पकड़ सकते हैं
1: जी जी जी।
2: इसमें आपको क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे
1: जी।
2: हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को रोगों से और क्योर कैसे कर सकते हैं
1: जी। ऋषि जी, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है तो लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है इन बीमारियों को
2: जी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और अभी के समय में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों रोगी हो रहे हैं
1: जी।
2: और यह लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज्यादा अपने को देखने में आ रही है, जैसे मोटापा हो गया, बीपी हो गया, ये बीमारियां ज्यादा देखने में आ रही है और ये बहुत कॉमन होती जा रही है
1: जी।
2: इन बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है और हमको इसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या और दिनचर्या के पालन करने से हमारे जो रोग हैं ये हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी तीव्रता को भी कम किया जा सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, ये आपने बात करी जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की, तो ये जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर है क्या इसका इलाज भी संभव है आयुर्वेद में?
2: हाँ जी बिल्कुल, इसका वर्णन है आयुर्वेद में। डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं जो कि प्रमेह के अंतर्गत बताया गया है और उसके अंदर उसके कारणों को भी बताया है और उसका निदान भी बताया है, इलाज भी बताया है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो उसमें आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है मानसिक स्वास्थ्य का भी, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य का भी इस चिकित्सा पद्धति में इलाज संभव है?
2: हाँ जी बिल्कुल है, और हमारे प्रकृति में ऐसी कई वनौषधियां हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। जैसे आपको शंख पुष्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, जटामांसी हो गई, ऐसे कई मेद्य द्रव्य बताए गए हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हैं। साथ ही आयुर्वेद में एक पंचकर्म चिकित्सा भी है जिसमें शिरोधारा प्रक्रिया, यह इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिरोवस्ती होती है, शिरो अभ्यंग होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज है
1: जी। जी
2: आयुर्वेद में योग का भी वर्णन है, योग में आपको ब्राह्मी प्राणायाम होता है, इससे भी लाभ मिल सकता है। तो मतलब बहुत तरीके से हम मानसिक चिकित्सा इसमें हम दे सकते हैं
1: बिल्कुल
2: मानसिक रोगों में।
1: डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, तो आजकल पंचकर्म क्रिया का भी नाम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, तो क्या यह पंचकर्म जो प्रक्रिया है उससे किसी भी तरह के पेशेंट को किस तरह का लाभ मिलता है इस पद्धति के द्वारा?
2: पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। हम आयुर्वेद में ये देखते हैं कि रोगी के अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, जिसमें वात, पित्त, कफ हमारे मुख्यतः दोष माने गए हैं और ये अपने सही प्रमाण से ऊपर रहते हैं तो वो दोष के लक्षण दिखाते हैं। तो इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पंचकर्म है। इसमें कुछ हद तक हम शमन चिकित्सा के रूप में या रोगों को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये आत्यायिक चिकित्सा के रूप में भी काम आती है, मतलब एक्यूट पेन रिलीफ करने में भी मदद करती है
1: जी।
2: पंचकर्म को हम मुख्यतः तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्व कर्म, दूसरा होता है प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन, जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, उसका भी बहुत सारा अलग विस्तृत वर्णन है जिसमें अलग अलग रोग के हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। मुख्यतः प्रधान कर्म में आते हैं जो पांच मुख्य कर्म है, उसमें वमन आता है, मेडिकेटेड वोमिटिंग, दूसरे नंबर पर आता है विरेचन, मेडिकेटेड लूज मोशन, फिर तीसरे नंबर पर आती है बस्ती चिकित्सा जिसमें हम ऑयल और काढ़े को एनस में इंट्रोड्यूस करते हैं। चौथे नंबर पर आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण के अंदर हम ब्लड लेटिंग करते हैं, कहीं किसी पार्ट में अगर हमारे को कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है या वहां घाव बन रहा है तो उस जगह से हम दूषित रक्त को निकालते हैं।
3: जी।
2: पांचवें नंबर पर आता है नस्य प्रक्रिया। नस्य प्रक्रिया यानी नाक में मेडिकेटेड ऑयल को, कुछ चून को या काढ़े को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक चिकित्सक के देखरेख में, और वो

0: क्रिया हमको बहुत अच्छा लाभ देती है। ऐसे ये पांच मुख्य कर्म पंचकर्म में आते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म होता है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद में जो पश्चात कर्म में धूमपान वगैरह होता है, संसर्जन कर्म होता है, उसको फॉलो किया जाता है।
1: जी जी, तो ये आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म करने के लिए क्या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना अनिवार्य है या वह घर में रहकर भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं?
0: नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको चिकित्सक की देख रेख में ही कराना है, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी आसान नहीं है। इसमें चिकित्सक उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि उसके वाइटल्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसीजर के लायक है या नहीं है, इस प्रकार से वो डिजाइन करता है एक चिकित्सक। तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में कराना या एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना ज्यादा उचित होगा।
1: जी जी जी, अब जैसे आपने बात करी पंचकर्म की, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति में खान पान की भूमिका क्या रहती है?
0: हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो आहार हमारी सबसे पहली चिकित्सा है। आहार से ही हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमको एसिडिटी हो रही है, हमको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हम उसमें अगर तीखे पदार्थ लेते हैं तो वो उसको और एग्रीवेट करता है। उसी के बदले में अगर हमने उसमें थोड़ा सा मधुर द्रव्य दिया तो उसको सबसाइड कर देगा। तो आहार का तो बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद में और आहार का महत्व भी बहुत कुछ है इसमें।
1: जी जी जी, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है उसमें आहार का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आहार के माध्यम से जैसा भी हमें डॉक्टर साहब ने भी बोला, काफी हद तक हम चीजों को या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो यह है कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी रख सकते हैं?
0: ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आज के दौर में देखने में आता है हमारी प्रैक्टिस लाइन में कि रोगी पहले से ही कुछ मेडिकेशन करता हुआ आ रहा है और वो डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर। अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा स्विच हो जाऊं या मैं उसमें कुछ और अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, तो बिल्कुल आयुर्वेद की उसमें मदद लेनी चाहिए और पैरेलल में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता दीजिए और उनके संपर्क में रहिए और फिर आप टैपरिंग डोज में धीरे धीरे अपनी मॉडर्न मेडिसिंस को आप रिड्यूस करते जा सकते हैं और आयुर्वेद को आप लेते जाएं। ऐसे करके आपका स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो जहन में आ रहा है वो यह आ रहा है कि आयुर्वेद के क्या कोई साइड इफेक्ट है?
0: इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज की अगर अति मात्रा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे हम डे टू डे लाइफ में शक्कर ज्यादा खा रहे हो तो उसका भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे ही आयुर्वेद के चिकित्सा है, इसको आपको उचित मात्रा में, उचित प्रमाण में अगर लेंगे तो लाभदायक है। अनुचित प्रमाण में ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं तो उससे फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा। जो कि आपको अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं तो वो उस समय वर्णित करते हैं कि इसको इस तरीके से इस मात्रा में लेना है तो वो लाभदायक बनेगी।
1: जी जी जी, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आयुर्वेद में ऑपरेशन के माध्यम से भी इलाज संभव है किसी बीमारी का?
0: बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आयुर्वेद सिर्फ औषधि सेवन करने की विधा नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस भी बताए गए हैं। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको मॉडर्न के डॉक्टर भी अपना फादर ऑफ सर्जरी मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और हमारे यहाँ आज भी कई बीमारियों के ऊपर सर्जरी होती है, जैसे मुख्यतः पाइल्स के अंदर, भगंदर यानी फिस्टुला, इसके अंदर की जाती है सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेडिसिन से पहले क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई है और बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया है डिजीज, तो फिर सर्जरी भी की जाती है जिसमें क्षार सूत्र पद्धति से इलाज किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को अक्सर देखा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, स्वयं से ही दवाई ये सोच के ले लेते कि शायद आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं बताना चाहूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन की चिकित्सा विधा नहीं है। ये दिखती आसान है पर इसके अंदर बहुत कुछ अध्ययन करने की जरूरत होती है। हम एक औषधि के अंदर रस, गुण, वीर, विपाक सब कुछ देख रहे होते हैं और एक आयुर्वेद चिकित्सक अपने 5.5 साल की पढ़ाई करके एक बैचलर डिग्री प्राप्त करता है। आज के समय में इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गया है, इसमें एमडी होने लग गई है। तो स्पेशलाइजेशन होने से और क्वालिटी इनहेंस हुई है। तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से कई गलतियां होने के चांसेस बनते हैं और जो कि रोगी को भोगने पड़ते हैं, और फिर वो समय की भी मर्यादा है। अगर कोई रोगी अपने जितनी जल्दी डॉक्टर के पास में

0: पहुंच जाता है तो रोग को ठीक करने में हमें समय कम लगता है और जितना समय ज्यादा गवा देता है उतने ही कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर इलाज करने में देरी होने लगती है। तो बेहतर है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करके टाइम वेस्ट ना करें और हम उसकी जगह पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो जल्दी समय मिलेगा इलाज करने का और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जल्दी ठीक होने की बारी आ जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज के दौर में इंटरनेट पर अवेलेबल हो गए हैं रील्स वगैरह जिसमें लोग अपना उधर से देख के सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है, तो ये वही श्रोता है जो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जा रहे हैं या वो किसी रील्स के कारण देख रहे हैं या ले रहे हैं दवाइयों को, यह अनुचित है। इसमें आप उस विंडो पीरियड, वो जो पीरियड है, जो शुरुआती पीरियड है जिसमें हम जल्दी ठीक कर सकते थे, वो गवा देते हैं और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर के लिए भी आप चुनौती बढ़ा रहे हैं और अपने लिए भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मुझे कहना है कि ये सेल्फ मेडिकेशन को तो बिल्कुल ना करें, हमारे आसपास चिकित्सक अवेलेबल हैं और उनको दिखा के आप चिकित्सा परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी, बहुत अच्छी बात की आपने और हम अपने तमाम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दौर है उसमें बिल्कुल भी आप किसी तरह की रील को या किसी तरह की साइट पे जाकर स्वयं से उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर है, डॉक्टर से परामर्श लें और तभी आप अपना इलाज करें। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि वह किस तरह से अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से?
0: आयुर्वेद एक आपको बहुत अच्छा साइंस मिला है और उस साइंस में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों चीजें मेंशन है, तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। मुख्यतः आहार पर अपना ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है और वही हमको नुकसान दे रही है। दूसरा, हमारी निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि अपने कार्य के कारण आप निद्रा को प्रॉपरली ना लें तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आहार और निद्रा पे विशेष रूप से ध्यान रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षमता अच्छी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह हमारे श्रोताओं के काम आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी आयुर्वेद और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ऋषि मिश्रा से मनीष गजबिये की बातचीत और अब सुनिए ये प्यारा संगीत।

श्रोताओं, आज का युग तकनीक का युग है। तकनीक ने जहां हर क्षेत्र में अपना स्थान लिया है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। आज मोबाइल एप्स, स्मार्ट वॉच और ऑनलाइन परामर्श की मदद से लोग घर बैठे अपनी सेहत पर नजर रख पा रहे हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और कदमों की गिनती जैसी जानकारियां अब तुरंत मिल जाती हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब दूर दराज के मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले पा रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कई बीमारियों की पहचान जल्दी करने में मदद कर रहा है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी आवश्यक है। केवल इंटरनेट की जानकारी पर भरोसा करने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना भी आवश्यक है। स्क्रीन टाइम कम करना रखना व नियमित व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। अब तो तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे उपकरण भी आ गए हैं जो नींद की गुणवत्ता को ट्रैक करने, उसका विश्लेषण करने और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह तकनीक आपको गहरी नींद, खर्राटे, दिल की धड़कन और सांस लेने के पैटर्न को समझने में सहायता करती है। तकनीक और स्वास्थ्य का संतुलित मेल हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और सरल बना सकता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ विशेष सेहत सूत्र, जिससे बढ़ते तापमान में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का सेवन करें। ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। हल्का व सुपाच्य भोजन लें। दोपहर की तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचें और निकले तो सिर व मुंह ढककर और आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर निकले। लू से बचने के लिए केरी के पन्ने का सेवन करें व प्याज की एक गांठ साथ में लेकर ही बाहर निकले। सूती और हल्के रंगों के कपड़े पहने जिससे शरीर को ठंडक मिले। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें क्योंकि गर्मी उन्हें अधिक प्रभावित करती है। थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर हम गर्मी के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है इन सभी बातों को अपनाकर आप अपने को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक अवश्य दें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त प्रेक्षा सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: कास्की, आज का कार्यक्रम केंद्रित है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना पर। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: जी हाँ, सिर्फ एक सेकंड की चूक और किसी की हस्ती खेलती जिंदगी सड़क पर बिखर जाती है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उस एक घंटे की जो किसी दुर्घटना के बाद मौत और जिंदगी के बीच की दीवार बन जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में गोल्डन आवर कहते हैं। अक्सर दुर्घटना होने पर घायल को अस्पताल तो पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वहां सबसे पहला सवाल होता है, पैसे कौन जमा करेगा। इसी सवाल और कागजी कार्रवाई में कई बार वो गोल्डन आवर निकल जाता है और हम किसी अपने को खो देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। इसके तहत दुर्घटना के पहले 48 से 72 घंटे तक घायल का मुफ्त और कैशलेस इलाज किया जाएगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट। आइए आज के डगर विकास कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत करते हैं और इस संजीवनी योजना को विस्तार से समझते हैं। श्रोताओं, किसी भी योजना को बारीकी से समझने के लिए हमें विशेषज्ञों की जरूरत होती है। ये कैशलेस योजना आखिर काम कैसे करती है और अस्पताल पहुंचने पर प्रक्रिया क्या होती है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर धर्मेंद्र यादव से।
1: पीएम भारत योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह जीवन बचाने वाली चिकित्सा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। डॉक्टर के रूप में हम रोज ये देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में
2: हुए हैं। लीजिए अब पेश है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं लोक भजन।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल के प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत का। कलाकार हैं प्रकाश पाठक, आप सुनिएगा इनकी आवाज में चंद गजलें। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पेश है पहली गजल, शायर है दुष्यंत कुमार त्यागी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगली गजल। कलाम है गोपाल दास नीरज का और कलाकार प्रकाश पाठक।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रकाश पाठक की गायकी।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गीत, उदित नारायण, वसुंधरा दास और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत ए आर रहमान का।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की गली से। SH बिहारी के बोल हैं और संगीत OP नैयर का, खूबसूरत आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

0: विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में साइबर तहसीलों की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश के पहले साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरूआत की गई है। प्रदेश में E0 FIR का भी शुभारंभ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीताज और उज्जैन फॉल्कल्स के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहां पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शेरनीज से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरणविद प्रखर चिंतक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगरमालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल सुगम पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार, साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
4: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्ततयुम।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
5: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
6: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
7: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो

गई। वैन में दो महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लावारिस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रकाश मेहरा के बोल है और संगीत कल्याण जी आनंद जी के। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इसी के साथ एक और पत्र है हमारे हाथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, बोल है SH बिहारी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली, और एक और पत्र है हमारे हाथ में सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सलिया शोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

गौरीनगर इंदौर से आनंदन कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले और जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। और एक और पत्र हमें मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू का। हमारे ये सभी श्रोता सुना चाहते हैं तेजाब फिल्म का गीत, नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ है, देव कोहली का गीत है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां और छत्तीसगढ़ दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रंगने से दिलेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम माप की फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो

पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरान नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को रवाना किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और मध्य प्रदेश लीग एमपीएल 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के 10 और महिला वर्ग के 5 टीमें हिस्सा लेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारे आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम में युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और 8:15 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन होंगे 6:45 पर। ग्राम सभा ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। राग होगा जय जय बंती। ये थे हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने वाले हैं और मीडियम वेव पर प्रसारण हमारा समाप्त होता है। शाम 5 बजे हम कार्यक्रमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा ये प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मिनट और सेकंड 13:56। हेलो बंदन।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी शाम की सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुभूति और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इस बेहद खूबसूरत और उमंग और उत्साह से भरी शाम में आप सभी का स्वागत है। हमें पता है, किताबों के बोझ से लेकर करियर के इम्तिहानों तक और ऑफिस की थकान से लेकर घर की फिक्र तक, आज का दिन हो सकता है आपके हौसले के लिए थोड़ा थका देने वाला ज़रूर होगा, पर अब वक्त बदल चुका है। घड़ी में 5 बज गए हैं। ये फिजाएं आपसे कह रही हैं कि थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ी सांस लीजिए और खुद को इस सुंदर शाम के हवाले कर दीजिए। साथियों, आज है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन और हम में से कई लोगों का बहुत ही बिजी दिन, लेकिन आज का दिन बहुत विशेष भी होता है हम सभी के लिए और युववाणी सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। जानेंगे आज के दिन के बारे में, साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा सोमवार का स्पेशल सेगमेंट कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हम ढेर सारी बातें भी करेंगे और मस्ती भरे गीत भी सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत शाम की और सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा गीत।

साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे युववाणी कार्यक्रम में हम हर दिन आपसे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? और आज का दूसरा प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? हम प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहला प्रश्न, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर रखिएगा और कार्यक्रम के अंत में जब हम उत्तर बताएं तब आप अपने उत्तर जरूर मिलाइएगा।

साथियों, हर साल आज के दिन यानी 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स वैक्सीन यानी कि एक तरह के टीके का विकसित करना आवश्यक तौर पर माना जाता है, जिस पर जोर दिया जाता है और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और स्वयंसेवकों के प्रयास को सम्मानित किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य HIV की रोकथाम के लिए टीके खोजना और साथ ही उनकी तत्काल आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और विश्व एड्स दिवस दोनों अलग अलग हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो एड्स की बीमारी और उससे बचाव के प्रति सामान्य जागरूकता से जुड़ा है। इनसे दुनिया भर में

करोड़ों लोगों को और उनके परिवारों को प्रभावित हम देख रहे हैं कि किस तरह उन्हें किया जाता है, और एड्स से निपटने के लिए की जा रही अहम कोशिशों के बावजूद एचआईवी से पीड़ित लोगों की संख्या अधिक बनी हुई है। साथ ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस एचआईवी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वायरस के खिलाफ एक असरदार वैक्सीन बनाने के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का एक जरूरी मौका मुहैया कराता है। ये खास दिन इस बात की याद भी दिलाता है और साथ ही याद दिलाने का काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे लड़ने और एचआईवी से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए एकजुट है। इसके अलावा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस दुनिया को संदेश देता है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही इसे खत्म करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

संग्रहालय के जरिए आज की पीढ़ी इतिहास के बारे में जान पाती है। संग्रहालय के जरिए भविष्य की पीढ़ी भी आज के युग के बारे में जान पाएगी। आज यानी 18 मई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साथियों, हर साल आज के दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने के उद्देश्य से आम जनता को संग्रहालयों के महत्व, हमारी ऐतिहासिक धरोहरें और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति जागरूक करना होता है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ICOM द्वारा की गई थी। तब से लेकर आज तक ये आयोजन लगातार हमारी प्राचीन सभ्यताओं, कला और ज्ञान विज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। बता दें कि संग्रहालय वो स्थान होता है दोस्तों, जहां पर इतिहास से जुड़े प्रमुख चीजों का संग्रह करके उनका संरक्षण किया जाता है। संग्रहालय भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुरातत्व संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, रेल संग्रहालय, रक्षा संग्रहालय आदि। इस दिवस के मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में किस तरह जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को अपने अतीत और इतिहास से परिचित कराना, सांस्कृतिक संवाद, विभिन्न सांस्कृतियों के बीच सहयोग और शांति को बढ़ावा देना और साथ ही इस अवसर पर होने वाले दुनिया भर में विशिष्ट आयोजनों के माध्यम से संग्रहालयों में विशेष प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हुए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। साथ ही भारत में इस दिन कई राज्यों के प्रमुख स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क भी किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग और हम सभी अपनी विरासत को करीब से देखें। इसके अलावा कला और संस्कृति विभाग द्वारा कई शहरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। संग्रहालय हर देश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय दिवस का यही उद्देश्य है कि लोगों को इतिहास के बारे में शिक्षित होना और जागरूकता बढ़ाना। संग्रहालय के संरक्षण के कारण ही आज दुनिया भर में म्यूजियम्स में सालों पुराने दस्तावेज और संस्कृति देखने को हमें मिलती है। दुनिया भर में समृद्ध संस्कृति, परंपरा का प्रचार और संरक्षण करने में भी संग्रहालय विशिष्ट योगदान देता है।

वैसे दोस्तों, क्रिकेट की बात अगर हम करें तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 19th सीजन बहुत ही ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब प्लेऑफ्स में पकड़ बनाने के लिए हर टीम कड़ी मेहनत कर रही है। बात करें आज के मुकाबले की तो आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, जो शाम 7 बजे से आप देख सकते हैं चेन्नई में ये मुकाबला किया जा रहा है। ये आईपीएल 2026 का 63rd लीग मैच है दोस्तों, और प्लेऑफ्स की रेस में अपनी जगह बनाए रखने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद ही ज़रूरी होने वाला है। जहां हैदराबाद 12 में से 7 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है, वहीं चेन्नई ने 12 में से 6 मैच जीते हैं और ये टीम छठे पायदान पर है पॉइंट्स टेबल में अगर हम देखें तो। और बात करें प्लेऑफ्स के नज़रिए से तो ये मैच अहम इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि फैंस की नज़रें एमएस धोनी पर भी टिकी हैं, जिनका चेन्नई में ये आखिरी मैच भी हो सकता है। दरअसल सीएसके का ये अपने घर पर इस सीजन का आखिरी मैच है। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आज का मैच किसी भी हाल में जीतना ज़रूरी है। अगर आज सीएसके हारती है तो वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वहीं एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और जीटी को प्लेऑफ्स का टिकट मिल जाएगा। वहीं आरसीबी का टॉप टू में रहना भी कंफर्म हो जाएगा। वहीं अगर सीएसके जीतती है तो प्लेऑफ के बीच 3 टिकट्स आज किसी को नहीं मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़कर सभी टीमें प्लेऑफ्स की रेस में जिंदा हैं। आरसीबी प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम भी बन चुकी है। तो देखते हैं कि आईपीएल के इस ब्लॉकबस्टर सीजन में अगली अपडेट क्या होती है, आज का मैच कौन जीतता है। तब तक के लिए आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

वैसे साथियों, जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि वैसे वैसे गर्मी भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। और ये तो महीना मई का है, जून भी आने वाला है, तो ये ना ये महीना, ये मौसम, यहाँ हमें छुट्टियों की बड़ी याद आती है और हम तुरंत चाहते हैं कि हम कैसे ना कैसे हॉलीडे ट्रिप ज़रूर प्लान कर लें। तो गर्मियों में घूमने के लिए कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन कौन से ऐसे हिल स्टेशंस हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने चाहिए, उनकी एक लिस्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हम बता देते हैं। गर्मियों में घूमने के लिए भारत में कई बेहतरीन ठंडी जगहें हैं, स्पॉट्स हैं, जहां आप भीषण गर्मी से राहत पा सकते हैं। मुख्य जगहों में मनाली, शिमला, लेह लद्दाख, स्पीति घाटी और भी कई सारे हिल स्टेशंस हैं। जैसे एडवेंचर के लिए स्पीति, लद्दाख या ऋषिकेश, और परिवार के साथ सुकून के लिए आप ऊटी, कुन्नूर या दार्जिलिंग बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ गर्मियों में घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। जैसे हम बात करें उत्तर भारत के हिल स्टेशन मनाली की, हिमाचल प्रदेश में ये हिल स्टेशन बर्फ और हरी भरी घाटियों के बीच जाना जाता है, जो बहुत मशहूर है। साथ ही शिमला टॉय ट्रेन और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित स्पीति घाटी भी कम बजट और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। लेह लद्दाख बाइक ट्रिप और एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है। गुलमर्ग और सोनमर्ग यानी कि कश्मीर में आपको फूलों की घाटी और ग्लेशियर्स देखने को मिल सकते हैं। मसूरी और नैनीताल में यानी कि उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी और झीलों के लिए ये जगह बहुत मशहूर है, और पहाड़ों की रानी के नाम से ये जगह जानी जाती है दोस्तों। साथ ही दक्षिण भारत के ठंडे हिल स्टेशंस जैसे कि ऊटी, मुन्नार और कुर्ग, ये सभी जैसे ऊटी तमिलनाडु में है, मुन्नार केरल में है और कुर्ग कर्नाटक में, ये सभी हिल स्टेशंस चाय के बागान के लिए, कॉफ़ी के बागान के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल भी शांत माहौल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पूर्व और अन्य जगहें जैसे कि दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में है, अपने चाय के बागान और कंचनजंगा के नज़ारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सिक्किम का गंगटोक प्राकृतिक सुंदरता और बौद्धिक मठों के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का त्वांग अपनी खूबसूरत वादियों और मठों के लिए जाना जाता है। और राजस्थान का माउंट आबू एकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जहां इस वक्त

आपको काफ़ी अच्छा अनुभव हो सकता है। और यदि आप कम बजट की या ऑफ बीट लोकेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशंस में जा सकते हैं, जहां आपको एक बहुत ही शानदार अनुभव मिल सकता है। साथ ही उत्तराखंड में अल्मोड़ा, धनौल्टी जैसे हिल स्टेशंस हैं जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का डलहौजी भी बहुत ही शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। तो ये सारी तो ऐसी जगह हैं दोस्तों जिनके बारे में हम रिसर्च करके आए थे और हमने आपको बताया। अगर आप ऐसी किसी हिल स्टेशन के बारे में जानते हैं या ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जो हमें इस गर्मी में ज़रूर घूम के आनी चाहिए या ट्राई करनी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक आइए सुनते हैं अगला गीत।

साथियों, अब वक्त है आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बताने का। आज का पहला प्रश्न था कि भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, जिसका उत्तर है राजस्थान के जैसलमेर को। और आज का दूसरा प्रश्न था कि अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, जिसका उत्तर है मालवा का पठार। हम

से आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। SH बिहारी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नर्तकी फिल्म का गीत। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है, रवि ने संगीतबद्ध किया।

0: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं अधिकार फिल्म से ये कवाली, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। रमेश पंत की रचना है, आरडी बर्मन का संगीत।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन

काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे

आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। और लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है।

0: है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir.
2: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
3: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen? To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love to recite it.
2: As I lie on my back, looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a big white bear.
3: I see a big white bear
2: looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back,
3: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
3: looking up at the sky,
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky. Oh, it's fun. It's fun to me.
3: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
3: To see whatever I want to see.
2: So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
3: Yes.

0: Did you like the song?
1: Yes, sir. It was lovely.
0: So, children, here is something to do for you. Okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajender Pal. Technical coordinator, Bati Lang Lingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थीं, वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थीं। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थीं कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं, वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मात वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। और अब पेश है सुगम संगीत, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनिमेश भट्ट के गाए गीत। सबसे पहले सुनिए गोपाल दास नीरज का लिखा गीत अनिमेश भट्ट के स्वर में।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अनिमेश भट्ट। आइए इनसे सुनते हैं खुर्शीद अजय का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अनिमेश भट्ट के स्वर में खुर्शीद अजय का गीत। इसी के साथ सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।

0: के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कडियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है नर्मदापुरम जिले से, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी।
1: नर्मदापुरम जिले में अप्रैल माह से ही तेज गर्मी पड़ रही है। 26 अप्रैल को सीजन का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बी फॉल और अप्सरा फॉल जैसे झरनों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून के दूसरे सप्ताह तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, शरीर को पूरी तरह ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी तथा तरल पदार्थ लेते रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां 2 चरणों में होने वाली जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से प्रारंभ किया गया है। 31 मई 2026 तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र दुबे।
2: इंदौर जिले में जनगणना 2027 के लिए प्रगणक अपने निर्धारित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ब्लॉक की पहचान और उसके बाद मकानों की गिनती कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल एवं पारदर्शी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि एक एक मकान और उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी का सटीक डेटा तैयार किया जाए, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 15 से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया था। इसमें 13,778 मकानों की गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनगणना 2027 की कार्य योजना और क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए जिले के मुख्य प्रशिक्षक जनगणना आर के पांडे ने आकाशवाणी को बताया।
3: भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्य, मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ है। इंदौर जिले में कुल 41 चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 19 और नगर निगम क्षेत्र में 22 हैं। और कुल जो प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, यानी जो मकान सूचीकरण ब्लॉक जो बनाए गए हैं, ग्रामीण में 2068 और नगर निगम क्षेत्र में 3,890, इस तरह से 5,958 ये प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में एक एक प्रगणक प्रत्येक परिवार में जाकर के डिजिटल फॉर्म में उनसे 34 जानकारियां ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन करते जा रहे हैं। और इनके सुपरविजन के लिए प्रत्येक 6 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। अभी तक 2,141 ब्लॉक पूरे जिले में हैं, जिनमें 100% काम हो गया है। ये काम 30 मई तक होना है।
2: गौरतलब है कि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सटीक एवं वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम, आवास की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का भी विश्लेषण होगा, जिससे जिले की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकेगा। जनगणना के दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से जनगणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनीन्द्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं खरगोन जिले का, जहां पर भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: खरगोन जिले में भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार खरगोन शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के करीब 350 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए। प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ गुणवत्ता की जांच को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री HL आवासी।
5: गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए महामार्च से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों जैसे बेवरेजेस पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, दूध एवं दूध उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, मावा एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच संपूर्ण जिले में विशेष अभियान के तहत

0: उक्त खाद्य पदार्थों के कुल 350 नमूने लिए जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं। जो खाद्य पदार्थ अवमानक पाए जाने पर या अन्य धाराओं के उल्लंघन करने पर माननीय सक्षम न्यायालय में 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिकायत पर भी विभाग के द्वारा तत्काल जांच कर नमूने लिए जा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं मंदसौर जिले पर, जहां पर ग्राम पंचायत से लेकर नगरी वार्डों में आयोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच निःशुल्क की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा।
3: मंदसौर जिले में ग्राम पंचायत से लेकर नगरी वार्डों में प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिविर में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आम जन को क्षय रोग से होने वाले लक्षण और इसके बचाव की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पहुंच रहे लोगों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ ही टीबी जैसी बीमारी के लक्षणों और निक्षय योजना के तहत मिलने वाली 1,000 की मासिक आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। आयुष्मान आरोग्य शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, एक्सरे, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी करीब 50 से अधिक बीमारियों की जांच, वहीं निःशुल्क दवाइयां वितरित कर बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर है झाबुआ जिले से, जहां की रामा तहसील में आयोजित ग्राम चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जल संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता हरीश कुमार।
4: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी CFR के तहत ग्राम साढ़ को सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ग्राम चौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम साढ़ और सदावा के बीच सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से वन संरक्षण, पारंपरिक सीमाओं और स्थानीय आवश्यकता पर चर्चा की। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और वन अधिकार से जुड़ी समस्याओं एवं सुझाव रखे। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश कुमार भरसट ने आकाशवाणी को बताया कि
5: हमारा झाबुआ जिला का पूरा प्रशासन है, जिसमें प्रशासन, पुलिस एंड फॉरेस्ट सभी अधिकारी, इसके अलावा हमारे जिले के सभी जो अधिकारी जिला स्तरीय है, तहसील स्तरीय है और ग्राम स्तरीय, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। गाँव चौपाल लगाने का यही उद्देश्य था कि प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, जो भी समस्या है हमने उनको बताने के लिए कहा और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनकी समस्या भी बताई और हमारे द्वारा जो भी अधिकारी है उन्होंने कुछ कुछ आने वाले समय में खाद से संबंधित हो या किसान की, क्योंकि ये किसान कल्याण वर्ष है, उसके तहत हमारे जो भी कृषि संबंधित उनको योजना के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी हमारी जो अपेक्षा है प्रशासन की कि लोगों को कैसे समरसता रहे और जो वन अधिकार, जो सामुदायिक वन अधिकार उनको पत्र प्राप्त हुआ है इस गांव को, तो उनको आगे कैसी कार्य योजना बनानी है और कैसे वो अपने अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन जो अधिकार है उसके तहत कैसे कार्य कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया। तो ये मुझे लगता है काफी अच्छा एक चौपाल रहा।
4: पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले में अपराध, दहेज, दारू और डीजे के बारे में बताया कि
6: जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब, मैं, DFO साहब और पूरे सभी विभागों के अधिकारी एक जाजम पे इस गांव में बैठे थे। पब्लिक से एक संवाद बनाने का प्रयास किया गया, कनेक्ट किया गया, उनकी चीजों को भी बहुत गंभीरता से सुना और एक हम लोगों के द्वारा भी एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पुलिस शासन आपके लिए है। किंतु उस जिले में कोई बहुत वैसा क्राइम नहीं है, किंतु जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके चलते जो अपराध है उसके बारे में एक अवेयर करने का भी प्रयास था कि शराब हुआ, डीजे हुआ, दहेज हुआ, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना आगे हम लोगों को आना चाहिए, उन सब चीजों से ही हम अपराध और बाकी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में इनसे बात की, काफी लोगों ने सहयोग किया और आने वाले समय में हम लगातार ऐसा प्रयास करेंगे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रुख करते हैं जबलपुर जिले का, जहां पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी।
7: जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण और वारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ कलेक्टर ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक सत्यापन करने और अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्यवाही करने को कहा है। जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236,67,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए जिले के 50,788 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है खंडवा जिले से, जहां पर वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा की गई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे।
8: कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने वनग्राम आंवलिया स्थित जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास केंद्र में किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं 12वीं एवं RTI उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली और स्वरोजगार से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतिभागियों को भोजन, आवास और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत के वन प्रक्षेत्र अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह अचालिया ने बताया कि
9: आज के प्रति स्पर्धात्मक दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी दक्षता और व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों तथा स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साथ स्वयं का कार्य भी प्रारंभ कर सके।
8: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है मंडला जिले से, जहां के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन 15 और 16 मई को किया गया। इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश शासन की मंत्री संपतिया उइके ने शिरकत की। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता शशांक चौबे।
10: आदि उत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक से आयोजित हो रहा आदि उत्सव जनजाति समाज की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा से आए गोंड एवं बैगा समाज के लोगों का स्वागत करते हुए आयोजन की भव्यता की सराहना की। आदि उत्सव के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्सव के दौरान जनजातीय लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, लोक गाथाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, चित्रकला और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनजातीय प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह दुर्वे, भज्जू सिंह श्याम और उषा बागले सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला जिले से मैं शशांक चौबे।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और जिलों की समसामयिक खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश

0: देश नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने की अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है FM 101.6 MHz पर, मीडियम वेव 462 मीटर पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर अंजलि भार्गव से ली गई भेंट वार्ता, विषय होगा सही मृदा नमूना

एवं परीक्षण अपनाएं और उत्पादन बढ़ाएं। इसके अलावा आप सुनेंगे लोकगीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:15 बजे और चित्रगीत रात 9:15 बजे। आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन सुना जा सकता है रात 10 बजे और रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित जीतेंद्र अभिषेकी का गायन, राग होगा रामकली।

0: अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:30। 6:35 पर होगा कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें कल जानकारी देंगी सुनीता पंडित, विषय होगा पराली का निदान। 6:40 समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का। सुनहरे पल ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:20 पर। कल सुबह 8:30 विविधा में आपको सुन पाएंगे पद्मश्री जनक पलटा से की गई बातचीत। लोक संगीत में 9:00 कलाकार होंगी रेखा सोलंकी और सुगम संगीत में 9:15 कल कलाकार होंगे लियाकत हुसैन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 आपको सुनवाएंगे शंभू प्रसाद पवार का गायन, राग होगा देसी। 10:00 जिले की चिट्ठी गानों प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। और 10:05 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, फिल्म संगीत 12:00, संग्रहालय से 12:30 महिला कार्यक्रम दिन में 1:00, 1:30 लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, दिन में 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 आपकी फरमाइश। अब एक नज़र कल शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। युवाणी कार्यक्रम में 5:00 आप सुनेंगे आज का क्रम के अंतर्गत हमारे शहर नर्मदापुरम के बारे में। 6:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुगम संगीत में कलाकार होंगे लियाकत हुसैन, सुनिएगा 6:30। और 6:45 पर लोक संगीत में रेखा सोलंकी को सुना जा सकता है। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में कल 7:20 पर आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल, वार्ताकार होंगे डॉक्टर C.K. रत्नावत। सुर्खियों में कार्यक्रम 8:00 से भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम 8:15। 9:00 दिल्ली से कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा। उर्दू कार्यक्रम कहकशां 9:30 भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कल 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन, राग होगा चारुकेशी। ये रूपरेखा थी सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार
1: प्रदेश से बोल रहे हैं के भोपाल के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैलें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेड क्रॉस और युवक रेड क्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेड क्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक MOU बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस MOU का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।

0: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।
1: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से मितव्ययी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है और उसके अनुरूप मितव्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
0: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल, बोर्ड प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के HR मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली CC रोड का आज भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुधनी तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
9: आरबीआई कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सगली बहना के और सगला दादा भाई ना के मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, जैसो कि सब कुछ मालूम है कि अपनो देश जो है कृषि प्रधान देश है, ने अपना किसान भाइयों है भी अपना देश का अन्नदाता है। तो हमारा देश का अन्नदाता ना का विकास और उनकी सुविधा उनके देखते हुए सरकार समय समय पर कुछ ऐसी योजना बनाती रहे जो उनका लिए और उनकी कृषि का लिए फायदेमंद रहे। ऐसी एक योजना के बारे में आज अपन बात करांगा जिको नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। भाई बहनों, कृषि में अच्छी उपज और पर्यावरण का लिए साथ ही साथ अपना भी स्वास्थ्य का लिए यह योजना बहुत कारगर है। भाई बहनों, जैसे अपन बिना जांच के कोई भी दवाई खेला ने केवा बाद में कि ये दवाई तो असर ही नहीं कर रही है, न तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ रही है, तो भाई होन तबीयत कैसे सुधरेगी? अब तब बताओ कि जब तक कोई जांच नहीं कराओगा, कई बीमारी को पतो नहीं करोगा, ने मन से दवाई खेलोगा तो कैसे स्वस्थ हो सकता हो? वैसेज अपनी मिट्टी भी इंसान उनकी तरह है, उके भी जांच की जरूरत है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड इन्हीं योजना का तहत अपन मृदा को स्वास्थ्य कार्ड बनवाई के अपने वह जाँच कर सकता है। जैसे अपन अपना खून की जांच कराए ने मालूम पड़े कि अपना खून में या अपना शरीर में कौन कौन सी तत्व की कमी है, उसका हिसाब से डॉक्टर अपने दवा दे दे। वैसे ज अपने मिट्टी परीक्षण से यो पतो लगी जाए कि अपना जो खेत की माटी है उसका अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटाश और जिंक कितनी मात्रा में उपलब्ध है, अपनी मिट्टी को पीएच मान कितरो है। अब अपने जब यूँ मालूम पड़ी जाएगो और कि अपनी जो खेत की माटी है उसमें कौन कौन सा तत्व कम है या कौन कौन सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है वो तो ठीक है, पर दिक्कत का कम है तो उनके अपने कितनी मात्रा में अपना खेत में डालनो है यो अपने मालूम पड़ जाएगो। तो भाई होन अपने आँख बंद करके खाद डालनो बंद करो। अपन अधिकतर देखने में आवे कि कृषक हो भाई उन देख ही ले कि भाई हमारा पड़ोसी ने या हमारा रिश्तेदार ने जो खेत में खाद डाली है उका से उकी उपज अच्छी हुई तो उच खाद अपन भी डाल दा, जिससे अपनी भी उपज अच्छी होगी। पर असोनी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने के अपन मिट्टी की जांच करवावांगा, उका हिसाब से अपन जो खाद है उको उपयोग करांगा। अपन अपनी खेत की मिट्टी को जो नमूनो है उका द्वारा मिट्टी को कार्ड बनवा सकता है। अने उना कार्ड जब बने के आऊगा तो मैं यो भी लिखियो रहेगो कि तुमने गेहूं लगाया है तो मैं कितना यूरिया की जरूरत है, अने सोयाबीन है तो कितो एसएसपी खाद आपके डालनो है। और यदि अपने ये सब बात पता चली जाएगी तो देखो कहीं होएगो कि अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अपना पैसा की बचत भी हो जाएगी। अभी तो भाई और आंधा धुंध जो भी खाद उनके लगे या

की जरूरत है अने सोयाबीन है तो कितो SSP खाद आपके डालनो है। और यदि अपने ये सब बात पतो चली जाएगी तो देखो कहीं होएगो कि अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अपना पैसा की बचत भी हो जाएगी। अभी तो भाई आंधा धुंध जो भी खाद उनके लगे या कहीं

भाई बहनों, सुशीला बेन को आए हो वो मीठो से लोकगीत अपन सुनियो। अने लोकगीत का बारे में अपन मतलब सुनने का पहला अपन बात करे थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बारे में। अने यो भी जानियो अपन ने कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने का बहुत सारा फायदा है, पर फायदा कब है? जब अपन मृदा को सही नमूनों जाँच केंद्र पर पहुँचावा और सही नमूना का आधार पर सही जाँच अपने मिलेगी और सही तरीका से अपने जाँच हो ही पाएगी तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवानो काम आएगो। अब यह सही मृदा को नमूनों अपन कैसे लाँ, परीक्षण कैसे करा और परीक्षण कराने के बाद अच्छो उत्पाद कैसे पावा, इन बारे में भेंटवार्ता सुनाऊंगा। भेंटवार्ता में डॉक्टर अंजलि

0: भार्गव, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विशेषज्ञ राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय इंदौर की है। इनसे बात करी है बहन तुलसा दरगैया ने, सुना अपन उनकी।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज हम बात करांगा सही मृदा नमूना न परीक्षण अपनावा न उत्पादन कसो बढ़ावा, इन विषय पर जानकारी देना का लेना। आज हमारा साथ स्टूडियो में उपस्थित छे डॉक्टर अंजलि भार्गव, मृदा विज्ञान विभाग राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय इंदौर से। तो अंजलि जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत छे, राम राम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते किसान भाइयों।
1: अंजलि जी, आज हमारी चर्चा को विषय छे कि सही मृदा नमूनो न परीक्षण कसो अपनावा जेका से हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ा। तो सबसे पहले तो हम किसान भाई ने सबसे पहले तो हम ये जानना चाहूंगा कि मृदा परीक्षण काई हो।
2: नमस्ते किसान भाइयों एवं श्रोतागण, आपकी मैं मृदा विज्ञान विभाग राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत हूँ। तो किसानों देखा जाए तो किसानों की आय और खेती की सफलता काफी हद तक मिट्टी की उर्वरता सेहत पर निर्भर करती है। आज कई किसान अधिक पैदावार की उम्मीद में बिना मृदा की जांच किए ही केवल अनुमान के आधार पर उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लागत बढ़ती जा रही है, फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और उपज भी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण है खेती की मिट्टी की वास्तविक स्थिति की जानकारी ना होना। ऐसे में किसानों के लिए मृदा परीक्षण और सही तरीके से मृदा नमूना संग्रहण बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मृदा परीक्षण क्या होता है। मृदा परीक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक एवं पीएच की सही जानकारी मिलती है। इस जांच के आधार पर फसलों के लिए आवश्यक उर्वरकों की सही मात्रा तय की जाती है और उसी के अनुसार किसान संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल लागत कम होती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है।
1: तो आप हमारे किसान भाई को ये बताओ कि मृदा परीक्षण कराना क्यों जरूरी है।
2: मृदा परीक्षण करना इसलिए आवश्यक है, खेत में जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी हमें जानकारी मिलती है, संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन कैसे संभव है वह हमें जानकारी प्राप्त होती है, अनावश्यक खाद उपयोग कम होता है, बचत बढ़ती है, फसल की पैदावार में वृद्धि होती है, मिट्टी की सेहत लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलायमान रखने के लिए उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होना जरूरी है, उसी तरीके से मृदा में पौधों की उचित बढ़वार के लिए उसमें उचित पोषक तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है।
1: तो जैसे आपने बताया कि मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है, तो एक लेना की कई प्रकार छे मृदा को नमूनों अपन कसो ली सका।
2: मिट्टी की जांच की रिपोर्ट तभी सही आती है जब खेत से सही तरीके से मृदा नमूना लिया जाए। यदि मृदा नमूना सही नहीं होगा तो हमारी जांच की रिपोर्ट भी गलत होगी, तो किसानों को गलत उर्वरक की सिफारिश भी मिलेगी। इसलिए हमें नमूना वैज्ञानिक विधि से लेना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें अगर हम देखें तो 0.5 हेक्टेयर का एरिया हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम 10 से 15 स्पॉट सेलेक्ट करेंगे, जिगजैग मेथड जेड आकार का हम बनाएंगे और उस मेथड में हम एक 10 से 15 पॉइंट से मिट्टी का नमूना एकत्रित करेंगे।
1: नमूनों लेने को सही समय का ही रहे, किस समय अपन नमूने लेने चाहिए मिट्टी को?
2: फसल कटाई के बाद या बुवाई से पहले, जैसे खरीफ फसल की बुवाई के पहले हमारा अप्रैल मई के दौरान मिट्टी का नमूना लेने का समय सही रहता है।
1: जैसे अभी किसान मैंने खेत में जायद की फसल लगेल छे ना, अब एक बात खरीफ की फसल लगावा तो जायद की फसल जैसा कटी जाए तो उसके बाद मृदा परीक्षण कर सकते।
2: बिल्कुल बिल्कुल, जायद की फसल की कटाई के बाद हम मृदा नमूना ले सकते हैं।
1: अच्छा, एक सटीक परिणाम का लेना और अपन का कई कई सावधानी रखनी चाहिए कि अपन का सही नमूना की जो जांच अपन ने दी मिट्टी की वो सही जानकारी मिले, जैसे अपन जो भी फसल लगी रहा है तो उसका अनुसार अपन को उत्पादन भी प्राप्त हो।
2: तो हमें सही नर्मदा नमूना लें और हमें क्या सावधानियां रखें उसके लिए जरूरी है कि उपकरणों की सफाई हो, जैसे जो हम खुरपी या फावड़ा यूज कर रहे हैं वो क्लीन हो। उसके बाद नमूना लेने वाला जो स्थान है उसकी ऊपरी परत से घास फूस कंकड़ हटा दें, फिर उसमें वी आकार का गड्ढा करें 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 या 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो गड्ढा वी आकार में खोदें और उससे मिट्टी की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत ऊपर से नीचे तक काटें और लें उसको। फिर उसके बाद जो मिट्टी आपने ली है, जैसे मैंने बताया था पहले कि 10 से 15 स्पॉट से लेना है, तो आपने जो मिट्टी कलेक्ट करी है आधा किलो के करीब, उसे आप आपस में एक बाल्टी में या कोई साफ कपड़े में एकत्रित करेंगे और फिर उसे चतुष्फल की एक विधि रहती है जिसमें हम पूरी मिट्टी को मिलाकर उसे गोल फैला देते हैं और फिर उसे 4 भागों में अलग अलग करते हैं। 4 भागों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसके आमने सामने के भाग को रखते हैं और आसपास के भागों को हटा देते हैं। यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास आधा किलो 500 ग्राम बोल सकते हैं वो मृदा नमूना ना बच जाए। तो जब हमारा आधा किलो नमूना बचा रहेगा तो हमारी जो प्रक्रिया है क्वाड्रेट मेथड चतुष्फलकीय विधि वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम एक साफ थैली, कपड़े की कॉटन की थैली या जूट की थैली ये ले सकते हैं, उसमें आप लेबलिंग करेंगे, उसमें आप किसान का नाम लिखेंगे, खसरा नंबर लिखेंगे, गांव का नाम, फसल का नाम जो आपने पहले ली थी और इसके पहले आपने कौन कौन से उर्वरक खेत में प्रयोग किए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको किस किस पोषक तत्व की जांच कराना है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर इत्यादि, तो वो आप लिख सकते हैं। और आपके जो भी नज़दीक में जो प्रयोगशाला है, जो हमारी सरकारी प्रयोगशालाएं हैं या प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर आप अपने सैंपल्स को भेजा सकते हैं। अगर हम देखें कि गहराई का चयन अगर देखें तो कितना गहराई होना चाहिए, तो सामान्य जो फसलें रहती हैं जैसे कि आपकी गेहूं, चना, सीरियल क्रॉप्स बोल रहे हैं या तलहनी फसलें, लेग्यूम क्रॉप्स बोल रहे हैं, चना दाल वाली फसलें, उनके लिए जो सैंपल की गहराई है वो हम 0 से 15 सेंटीमीटर व 15 से 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अगर बागवानी फसलों की बात करें जैसे फलदार वृक्ष हैं, आम हैं, चीकू हैं, अमरूद हैं, उनके लिए 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक 30 से 60 सेंटीमीटर तक गहराई रख सकते हैं। सटीक परिणाम के लिए अगर हम कुछ सावधानियां देखें तो खाद डालने के तुरंत बाद नमूना ना लें, पेड़ों के नीचे से पानी भरे स्थानों से नमूना ना लें, खाद या गोबर के ढेर के पास से नमूना ना लें, खेत के किनारे, मेढ़ों, नालियों, असमान स्थानों से आप नमूना ना लें, गीली मिट्टी की बजाय हल्की सूखी मिट्टी ले, साफ एवं जंग रहित उपकरणों का प्रयोग करें।
1: तो मतलब जब भी अपन मिट्टी को नमूनो ली रहे तो ये सब बातों को ध्यान रखा, चीकू का पेड़ का नीचे से नहीं लिया, जो मिट्टी जो सूखी होनी चाहिए, ये सब बातों को ध्यान रखा।
2: जी जी जी।
1: तो आप हमारे किसान मैंने कहा मिट्टी परीक्षण से संबंधित और कई जानकारी देना चाहता होगा।
2: इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे मृदा परीक्षण से आपको आपकी मिट्टी में क्या बदलाव दिखेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिट्टी की जांच के बाद किसान यह समझ पाते हैं कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सी खाद कितनी मात्रा में आवश्यक है। इससे जरूरत से अधिक खाद डालने की समस्या कम हो जाती है, संतुलित पोषण मिलने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार आता है। इसके अलावा देखा जाए तो उर्वरकों पर खर्चा भी कम होता है, मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है, फसल गिरने, पीलापन जैसी समस्याएं कम होती हैं, उत्पादन क्षमता अधिक टिकाऊ एवं लाभकारी हो जाता है। निष्कर्ष अगर हम देखें, अगर जो मैंने आज आपको बताया है सही मृदा नमूना एवं परीक्षण अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं, तो इस विषय पे का अगर मैं निष्कर्ष बताना चाहूं तो आज की जरूरत है इस बात की कि किसान पारंपरिक अनुमान पर आधारित खेती को छोड़कर वैज्ञानिक विधि को अपनाए। इस राह में मृदा परीक्षण और सही तरीके से मृदा नमूना संग्रहण एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका लाभ लंबे समय तक मिलता है। यदि किसान समय समय पर अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराए और वैज्ञानिक की सलाह के हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करे तो कम लागत में अधिक गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर सकता है तथा मृदा स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। यह टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: तो डॉक्टर अंजलि भार्गव, आपने हमारा किसान भाई नख सही मृदा नमूना न परीक्षण किस प्रकार से करा जिकासी अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम प्राप्त करी सकान, इना विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी न। जो हमारा किसान भाई इनो कार्यक्रम सुनी रहा है तो ये कार्यक्रम की जो जानकारी

0: सुना गा नौका माध्यम से अपना कार्य जो अपना खेती में जो मिट्टी परीक्षण करा गा तो सब इन बात को ध्यान रखा गा मिट्टी परीक्षण कराता समय। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सभी किसान भाइयों एवं श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिरी में बोलना चाहूंगी कि मिट्टी की जांच का सही ज्ञान खुशहाल बने किसान।
2: सही मृदा नमूना एवं परीक्षण अपनाए उत्पादन बढ़ाए इन विषय पर अभी अपन ने भेंट वार्ता सुनी। भेंट वार्ता में डॉक्टर अंजलि भार्गव सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विशेषज्ञ राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय इंदौर से थी। इनसे बात कही थी बहन तुलसा दरगैया ने। अने भाई बहनों ने देखो अब कतूरी की अपन कुछ घरेलू नुस्खा के बारे में बातचीत कर ला। घरेलू नुस्खा में आज अपन बात करांगा मखाना का फायदा के बारे में। भाई बहनों मखाना तो अपन सबज इस्तेमाल करा पर अपने यो भी मालूम होना चाहिए कि जो अपन मेवा होन खावा है उकाज बराबर अपना लिए बहुत फायदेमंद रहे मखाना। मखाना यूँ पचने में आसान रहे दिखने में बहुत हल्का रहे और मखाना बढ़ता वजन के कम करने में बहुत मदद करे। 100 ग्राम मखाना जब मनक खावे जब जय के 350 कैलोरी रहे तो यो और फेट तो इनमें बिल्कुल जीरो मात्रा में रहे। इका वास से मखाना खाने से पेट तो भर ही जावे पर जो फेट रहे या कैलोरीज रहे वे अपने शरीर में कम मात्रा में पहुँचे। शुगर और बीपी वाला उनको तो मित्र है मखाना। आप सब जानो है मखाना को स्वाद तो कि मखाना जो है वह स्वाद में बिल्कुल फीका रहे। इका वास से रक्त में जो शुगर रहे या शक्कर रहे उसकी मात्रा के नियंत्रित करे। अने लगभग 30 ग्राम मखाना यदि रोज खाया जाए तो मधुमेह और रक्तचाप की बीमारियों से अपने कुछ राहत मिली सकती है। अने मखाना में बादाम से भी ज़्यादा कैल्शियम रहे जो कि अपनी हड्डियों का लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे। अपनी हड्डियों का साथे साथे दांत का लिए भी फायदेमंद रहे हैं। बालकों में बच्चाओं में दांत से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उनके थोड़ा सा मखाना रोज खिलाना चाहिए। एनर्जी या ऊर्जा को भी अच्छो स्रोत है मखाना। इका लिए व्रत में देखियो जावे है कि मखाना की खीर बनेगी खाई जाइए। यदि दिन भर आप कहीं नहीं खाई रहा हो ने थोड़ा सा मखाना भी खाई लोगा तो आपका शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। मखाना का खाते वक्त यो भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इनके सेकी के या घी में तली के या भुनी के खानो उचित रहे। थोड़ा सा कालो नमक काली मिर्ची भी इस पर डाली के अपन उपयोग में ले सकता है। अने फाइबर रहे तो पाचन में बहुत अच्छो रहे। अने साथे साथे महिला होन में हार्मोन जो असंतुलन की समस्या देखने में आवे उम्र का साथ साथ महिलाओं में हार्मोन की असंतुलन की समस्या आवे खास करके महावारी का समय या फिर गर्भावस्था का समय ऐसा में यदि मखाना को सेवन करियो जाए तो वो भी अपनी बेन होन का लिए फायदेमंद साबित होएगो। अने भाई बहनों देखो मखाना का खूब सारा फायदा अपन ने जानी लिया। अब क्यों नहीं एक लोकगीत और सुन ला जी गाय बेन मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री ने।

भाई बहनों, कृषि उपज मंडी समिति इंदौर से मंडी का भाव हमारे तक आ गया है, तो भी हम आप तक पहुंचावा। आज मंडी में गेहूं की आवक थी 3,482 क्विंटल, भाव रियो 1,401 रुपया से लगे के 2,790 रुपया, मॉडल भाव 2,450 रुपया। सोयाबीन आई 4,474 क्विंटल, भाव रियो 1,825 से 7,220, मॉडल भाव 7,205। डॉलर चना आया 3,595 कुंटल, भाव रियो 6,000 से 9,140 रुपया, मॉडल भाव 7,300 रुपया। मूंग की आवक रही 490 क्विंटल, भाव रियो 5,800 से 7,775 रुपया, मॉडल भाव 7,400 रुपया। आने मंडी में देशी चना की आवक थी 386 क्विंटल, भाव रियो 3,250 से 10,000 रुपया, मॉडल भाव 5,600 रुपया। मूंग की आवक रही 490 क्विंटल, भाव रियो 5,800 से 7,775 रुपया। मिर्ची की आवक थी 213 क्विंटल, भाव रियो 7,590 से 18,500 रुपया, मॉडल भाव 11,410 रुपया। भाई बहनों, मंडी भाव की जानकारी का बाद एक लोकगीत तो और बने हैं, जिकी गायो है बेन शारदा पगारे ने।

बेन, दूर नगरी हो या कने नगरी हो, अभी को समय जो गर्मी पड़ी रही है उके देखते हुए से तो घर से नहीं निकलो तो ज अच्छो है। देखने में आई रही है कि आजकल खूब गर्मी पड़ी रही है ने आगे का 2-3 दिन में ऐसो भी अलर्ट जारी करियो गयो है कि 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ी भी सकतो है। तो ऐसा में अपने कई करनो है कि खूब पानी पीनो है, अपना शरीर में पानी की कमी नहीं हुई पाए। 8 से 10 गिलास पानी पियो और पानी पीने में यदि आलस आवे तो थोड़ा बहुत कहीं अपन फल को रस है, छाछ है, नारियल पानी है, नींबू पानी सब पदार्थ उनको भी उपयोग कर सकता है। अने 12 से 4 घर से भी बिल्कुल भी बाहर मत निकलो, अने कहीं जरूरत पड़ी जाए बहुत ज़्यादा तो ऐसा मैं अपना सिर के या तो गमछा से या फिर दुपट्टा से या टोपी से ढकी के निकलो, मतलब सूर्य की किरण हो सीधा अपना सिर पे नहीं पड़े। अने जहाँ तक हो सके हल्का सूती कपड़ा पहनो जिससे कि शरीर में पसीना का मारे कुछ दूसरे त्वचा का रोग नहीं होए। अने साथे साथे अब घर में बैठे बैठे फुर्सत में तो बैठोगा ही नहीं तो क्यों नहीं आम की कुल्फी बना के खा लो। अब तुम पूछोगा कि आम की कुल्फी कैसे बनावा, तो यो भी तुम्हारे बताई दूं कि आम की कुल्फी बनाने के लिए अपने सामग्री की जरूरत पड़ेगी। 2 आम ले लो, 2 गिलास दूध ले लो, 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 4 या 5 चम्मच शक्कर, अपना आम की खटास का ऊपर देख लीजो, इलायची को पाउडर और बादाम और पिस्ता की कतरन ले लो। अने सबसे पहला तो अपने कहीं करना है मोटा पेंदा का बर्तन में दूध के धीमी धीमी आँच पे पकने दो। जब वो उबली के आधो हो जाए तो इमें मिल्क पाउडर और शक्कर मिलाई दो अने एक उकाली और ले लो। जब यो रबड़ी की तरह गाढ़ो होने लगे तो इके आँच से उतार दो ने ठंडो होने धर दो। अब जब यो ठंडो होई तब इमें आम को गुदो जो अपन ने निकाली के रखियो है उके मिक्सर में अच्छी तरह से पीसी लो। उना पिसिया हुआ गुदा के जो अपन ने रबड़ी सरी को दूध रखियो है उमें अच्छी तरह से मिलाई दो अने जो इलायची को पाउडर है उके भी अच्छी तरह से मैं मिलाई दो। अने फिर इन सब के अच्छी तरह से मिले के छोटा छोटा स्टील का ग्लास ना में या चाय पीने का मग्गा होन में भरी के ने फ्रिज में 8-10 घंटा का लिए रख दो। पर 8-10 घंटा रखने से पहला जब रखिया बाद 2 घंटा हो जाए नहीं तो इके निकाली के अच्छी तरह से एक बार फिर से हलाई लो, क्योंकि इससे जो बर्फ जमने की समस्या रहे कुल्फी ना में वानी होगी न बर्फ नहीं जमेगी तो कुल्फी को स्वाद भी ज़्यादा अच्छो रहेगा। आना फिर जब यह जमी जाए तो फिर इन्हीं ठंडी ठंडी कुल्फी को आनंद लो, गर्मी को आनंद भी लो आने साथे साथे छुट्टी हो उनको आनंद भी लो, क्योंकि बाल बच्चा उनकी चली रही छुट्टी, तो बाल बच्चा उनकी छुट्टी चल रही है ना घर में तो भी घना परेशान कर ही रहा है। तो ऐसा में उनके थोड़ो सो अपने कुछ ऐसा खेल उनमें लगाओ जिससे कि भी मोबाइल से दूर रहे ने अपना जो पारंपरिक खेल होने जिसे अपन पहले खेलता था चंग पे अने पाचा न ऐसा कहीं का खेल हो तो उम्मीद भी अपन बालक उनके लग ही सकता है। अने बाहर खेलने बिल्कुल मत जान दो, अने बाहर खेलने के लिए बच्चा जीत करे तो उनके संजा का बखत घर से बाहर निकालो। अने इन्हीं छोटी मोटी बातों को ध्यान रखोगा तो बच्चा उन स्वस्थ भी रहेगा अने छुट्टी को आनंद भी लेगा। अने आपने भी कार्यक्रम को आनंद लियो, अब जाने की बखत हुई रही है। दोविदा, राम राम।

0: अभी खेती ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया।
2: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा MOU हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
2: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
3: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले 2 देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडारण होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी
2: जी,
3: उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोड मैप बनाया था उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो हैं वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
2: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है, और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
3: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं उसके तहत, और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं, और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है
2: जी,
3: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती है कि भारत की जो मार्केट है, खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर भी वो काफी निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें ये भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां।
2: जी, प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है काफी लंबा, लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हम समझते हैं कि ये 4 बिंदुओं पे मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
3: इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो यह है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे, तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ

0: हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है, तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे ये नॉर्डिक का अपना समूह है और के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो 3 देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं। तो यूरोप को इस तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी।
1: जी,
0: भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

जीवन में मिलना और बिछड़ना लगा ही रहता है। जहां मिलन खुशी और अपनापन लाता है, वहीं बिछड़ना अक्सर दर्द और खालीपन दे जाता है। लगता है जैसे दिल के अरमान ही टूट गए।

किसी का जाना वाकई दर्द की शुरुआत है, लेकिन कई लोग उसी दर्द के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। दिल की आह सहने वाला ही जानता है। झूठी हंसी से जख्म और बढ़ता गया, इससे बेहतर था खुलकर रो लिए होते।

श्रोताओं, किसी की पनाह में अपना जीवन यूं बिता देना जैसे जीवन से कोई उम्मीद ही बाकी ना हो, ऐसा वही कर सकता है जिसने दर्द को जिया हो। दर्द को सीने में दफन करके, दर्द से दोस्ती करके, अब तो दर्द के बिना जीना भी बेमानी लगता है।

श्रोताओं, दर्द की दास्तान जुबां पर खुद ब खुद चली आती है, तब जबकि दर्द देने वाला कोई अपना ही हो, मगर बात वहां तक पहुंचे कैसे, बस गुहार ही लगाई जा सकती है।

दर्द वही सीने में रखता है जिस पर बीती हो। गहरी संवेदना से वो और भी दुखी हो जाता है, शायद कुछ राज छुपाए बैठा हो। कुछ राज तो कैद करने दो इन नम आंखों में, हर किस्से तो शायर भी नहीं सुनाया करते।

0: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया।

0: लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो
2: और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किये। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म थी मेरे महबूब, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में मेरे सनम फिल्म का गीत। मजरू ने इस गीत को लिखा है, संगीत दिया ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पालकी फिल्म का गीत। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़े जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: हाँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, अब मैं अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगोनकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पे स्टैंप होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
0: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो, मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
0: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए।
1: जी जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है, बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात

0: है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपनी बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे, किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ जनगणना अधिनियम की, सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहां पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहां पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहां पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: ना मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: वृशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी, अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ग्वालियर गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
4: हाँ जी माँ जी,

0: हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते हैं और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं। तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहां पे रहती है वहां पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
3: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
3: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
3: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे देख के अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा? उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, तीन चार दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे क्लस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कम्प्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331081 पर और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी

0: चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
2: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
2: जी।
1: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
3: हाँ जी, हमारे 2 मकान है, एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
1: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
2: हाँ विशाल, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहां पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गांव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहां पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहां पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहां पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी।
2: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
1: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
2: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
5: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार
5: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन पंडा रखा रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
1: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को

0: चिंते नहीं है, लेकिन वहां पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है
1: जी। और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूं मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं स्वीकार करें महिमा का नमस्कार। आज के मन भावन में मैं आपके साथ हूँ, आपके ही गीतों के साथ, आपके पत्रों के साथ और आपकी पसंद के गीतों के साथ। तो लेते हैं ये पहला गीत जो हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज़ में। मेरे अपने फिल्म का गीत है, गुलजार के बोल हैं, सलिल चौधरी का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब। महाराष्ट्र से पंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला, देवीदास पोपलघट, भोकर से हरिभाव भिड़वे, श्रावण अनीता भिड़वे इसी गीत को पसंद करते हैं। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। हिंगोली से पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। संभाजीनगर से राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और राजेश साबले। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की पसंद पर, पेश है किशोर कुमार की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लाजवंती। पसंद आप सबकी है। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखीता पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। छबड़ा राजस्थान से इस गीत को पसंद किया आसिफ अली सिद्दीकी ने। रिंथोरा से बाबूलाल बोराखड़े, गोकुला मंगेश। महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, सरिता गावणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश। नागपुर से शैलेश गावणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गावणकर। दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक और झावेंद्र कुमार। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बासेरे। इसी गीत को पसंद करते हैं। नागपुर से वैशाली, सुमित और ध्वनि। और पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री और धनश्री।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म से। स्वर है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश पाटकर के। पसंद आप सबकी है। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम रियाज, रिफाकत शमरीन, परवीन मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर इसी गीत को पसंद करते हैं। दौर से अनिल कपचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, पूजा, स्मिता और राखी। वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदने। खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक और मोहम्मद उमर डाबर। इसी गीत के लिए फरमाइश लिखी है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय और समस्त गजभिये परिवार ने। छत्तीसगढ़ से ही रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां इस गीत को पसंद करते हैं हरिद्वार से। और प्रसिक कामले, तुषार कुंडे, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण इस गीत को पसंद करते हैं कोल्हापुर से। तो सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली, रोहित, सोनू मोनू, झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली, छोटू दादा इंगोले और टेलर आर डी इंगोले, हिंगोली से रामचंद, सिद्धांत, टिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम इंगोले। इसी गीत को पसंद करते महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत, करिश्मा और माई चौहान, अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब पोत्रा, मुश्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद, पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज बड़ोदे, जरूर वरुण से बाबा साहब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो, भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झवेंद्र कुमार वर्मा और इंदौर से राम लक्ष्मण खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी।

कार्यक्रम मन भवन का अगला गीत आपको सुन पाते हैं हमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, और सुनने वाले हैं आप सब लातूरहून से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर फैजनबी, शाकिर इस्लाम नबी, बाबा शेख करिश्मा, सानिया शकील पठान, बिस्मिलाबी शेख, गदर शेख, आणी नीलोफर, शेख हिप्पर सोगा, इसी गीत को पसंद किया। मालेगांव से सुनीता बाई, सानिका गजानन घायल ने,

वैसे राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद इसी गीत को पसंद करते हैं। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर मुस्ताक, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री। आगर से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला। बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी शिमाली और मीनू राज शिमाली।

मन भवन कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत आए दिन बहार की फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, सुनना चाहते हैं आप सब। खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, संदीप कुमार, माधुरी पिंटू और जयश्री। टेमा से तिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, सागर, राज, आरोही। बुरहानपुर से मुशर्रफ तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर और भैया तड़वी। जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, वैष्णवी जगदाले, वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज, युवराज कोलते, रिधोरा देवी। और इसी गीत को पसंद किया है जालना हुन से सुधाकर राजे जादव, प्रशांत जगुताई, वर्षताई, संचित प्रथमेश, सोहम, प्रणाली और सानवी ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले

उसकी तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।